हुसी विराकन सऊदी अरब ते हमला तेज करे छड़िया हुसी यमन में वधिक बिन बेटन ते भी कब्जो करे वरतो हुसैन जे सऊदी शहर मिस्के खबे सबा ए ताइफ तेरे हमलन में 13 शहरी जख्मी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अज मिस्र जो दौरो कंदो मिस्री सदर सां मुलाकात थे हुकूमत पेट्रोल 4.42 रुपया ए डीजल 6.10 रुपया फी लीटर महंगो करे छड़ियो पेट्रोल जो नओ अघ 380.24 रुपया ए डीजल जो नओ अघ 409.42 रुपया फी लीटर थी वयो अघनि में वाध ते शहरी परेशान आहिनि हुकूमत खे पेट्रोल सस्तो करण जो मुतालबो नओ देरो भरिसां पुराणे तकरार तां हाज़िरी ते वींदड़ भॼणा कतल गड़ी खुदा बख़्श भुट्टो थाणे जी हद सिम शाख वटि पुराणे तकरार तां हथियार बंधन फायरिंग करे सहित गड़ियो में हाकिम कयो खे कतल कयो इतलाह ते गड़ी खुदा बख़्श भुट्टो थाणे जी पुलिस पहुची लाश तहवील में वठी पोस्टमार्टम लाइ नओ देरो इस्पताल मुंतकिल कया

0: कराची के इलाके सरजानी टाउन में औरतें संदस पे बार गलो कपियल बेदर्दी से कतल। सेक्टर D7 में घर मां 34 वरन की मेवेश 6 वरन की हीरा 5 वरन के हुनैन जा गलो कपियल लाश मिलिया। जख्मी हालत में हथ आयल 18 महीने की अश्मीरा अस्पताल में इलाज दौरान दम दिनो। पुलिस शक की बुनियाद से औरत के मुड़स के गिरफ्तार करे वरतो। वडे वजीर वाके की रिपोर्ट तलब करे वरती। मुराद अली शाह चयो है वाकई ताई अफसोसनाक है। जिम्मेवार के कानून के कटेड़े में आंदो वे। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बरसात गर्मी जो जोर घटी वो वज किरण वारन वाकन में एक औरत फोत 4 जणा जख्मी। कराची हैदराबाद उमरकोट मिठी कलोई इस्लामकोट ठठो सजावल कड़ो गंवर शादीलाल दड़ो जाती मीरपुर भठोरो मातली नसरपुर घोड़ाबारी कोटली समेत बेन इलाकों में वसकारो डिप्लो जे गोठ छाछड़ो में वज किरण सबब औरत राहकी जाल खानी फोत संदस मुड़स बबारड़ा जख्मी। कलोई भरसा वज किरण सबब नींगर असलम चौहान जख्मी थी पे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत जवाबित लागू हैं।
1: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुब्तला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
2: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:30 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस, टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
6: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो,
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03132525786।
5: जी हा, 2311-2525-786।
6: GAFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: कलमा पढ़ो ते हिक देरा देहर पढ़न बियाए बल बल पढ़न दिए यार सजर दी हूं दिसा को जुदाई मुस्लिम विचों का फर्थी वन एकेरी हूं दी अदाई यार मुस्तफा जैसी जीने एरी करी न अंधाई
1: अर्दा मजबूर आशिक के अंजा यार दोस्त रोकिन था तू पहले मैं वो सम्मेलन न वन मुझा दुश्मन टोखे होते तुझा वेरी बारे वजंदा अर्ज करे पियो मां मौत खाना थो रजा बराल महबूब जो दीदार जरूर करनो पौंदो मां त घणो पहले पान खे रोचा पर छा करया मुझी दिल न थी रहे।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: भारत का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

दोस्तो यो हर कोई मानू चवंदो आ त जनी लाए मुआसी से कांधी न थिया पर इने किसे जी की के शायद खबर न हुंदी त यो की छो छो सडियो त जनी लाए मुआसी से कांधी न थिया आश्क वेचारो जड़ा बीमार छो यो किसो ता के आ सही करे तो बुधाया आश्क वेचारो जड़ा बीमार छो पंजे माइटन आई दोस्तन के चई तो मुखे पंजे महबूब जे मुल्क ते खणी हलो आ उते मरंदुस जो मुझो महबूब मुझो कुल्हे कांधी थी

आउं ते सोचा पियो जे मुझे मथा मौत आयो ता उनके छा चवंदस ओ ते

0: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस, हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
1: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बहितरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग 9:30-6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज़ गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
5: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मोरू, नौशहरों, मीरपुर,

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: बैंक इस्लामी लाया, पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
3: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
3: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9-6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
3: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 03125252586।
4: जी हा, 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: White H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिससे मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण और तुंजे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी, आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली, वधिक मालूमात लाय 2347-3141-230।
1: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 बजे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
2: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 11:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Har din har pehar zindagi ki lehar GFM 88 network Sindh ki awaaz.
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग.
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4.

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: खे हर सूरत में मथां रखणु घुर्जे। वफाकी आईनी अदालत जे चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान तकरीब के खिताब कंदे चयो आहे त आईन ते अमल करे सघे थो, मुआछरे में इस्तहकाम आणे सघे थो। नई अदालती साल में इंसाफ जी फरहमी वारो अज़म मरजायूं था।
1: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां एनडीएम चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर जी मुलाकात। एनडीएम में चेयरमैन वज़ीर आज़म के मुल्क में बरसाती सूरत हाल है अगवाट कयल। इंतजामन बाबत ब्रीफिंग डिनी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरसात मुतासरन जे वार करण जी हिदायत कंदे चयो त मुतासिर थियल पुलन ऐं रस्तनि जी तामीर खे बि यकीनी बणाए वञे।
0: लबनानी घरू वज़ीर जी घरू वज़ीर मोहसिन नकवीअ सां मुलाक़ात। ॿितरफ़नि लाॻापन समेत खिते जे सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। ॿिन्ही अॻवाणनि जे मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। लबनानी घरू वज़ीर खे घरू वज़ारत जे आफ़ीस पहुचण ते सलामी बि ॾिनी वई।
1: सऊदी अरब जो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अॼु मिस्र पहुचंदो, मिस्री सदर ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो। हिते जी सूरतहाल समेत ॿिन तरफ़नि लाॻापन ते ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं। यूएई जे बि परॾेही वज़ीर सां मिस्र, कतर ऐं कुवैत जे हम मुनसिबनि सां राब्ता। हिते जी तब्दील थींदड़ सूरतहाल ते मुशावरत कई सां राब्ता। हिते जी तब्दील थींदड़ सूरतहाल ते मुशावरत कई।
0: तब्दील थी चुकी आहे। ईरान जा शर्त क़बूल करण ताईं ॻाल्हियूं न थींदियूं। ईरान जे क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार मोहसिन रज़ाई चयो आहे त अमरीकी सदर कॾहिं चवे थो ॻाल्हियूं न थींदियूं ऐं कॾहिं ॻाल्हियुनि करण लाइ तयार हुजण जा बयान ॾे थो। संदसि बयाननि ते कंहिंखे गुमराह न थियणु घुर्जे।

0: बाद पेट्रोल 380 रुपया 24 पैसा, डीजल 409 रुपया 42 पैसा फी लीटर थी वयो। अगन में वाते शहरी परेशान आहिनि, हुकूमत खां पेट्रोल सस्तो करण जो मुतालबो।
1: कराची के इलाके क्लिफ्टन में प्लाटन के गैर कानूनी अलाटमेंट वाले केस के एहतसाब अदालत में बुधणी वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल ए बिया पेश न थिया। एहतसाब अदालत वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल ए बियन के नोटिस जारी करे छड़िया, समूरन जवाबदारन के पेरी अक्टूबर ते तलब करे वरतो।
0: मीर रज़ा केस जी अदालती जांच जारी, जांच ऑफिसर कमीशन में वधीक दस्तावेज जमा कराए छॾिया। डीएसपी सिराज लाशारी पारां जमा करायल दस्तावेजनि में शाहिदनि जा वधीक बयान ऐं डायरी बि शामिल। जांच ऑफिसर मीर रज़ा जे साथी एहसान अली जो हलफ़नामो बि जमा करायो।
1: नओं देरो भरिसां पुराणे तकरार तां हाज़िर ते वेंदड़ ब ॼणा क़तल। गढ़ी खुदा बख़्श भुट्टो थाणे जे हद शिमशाक वटि पुराणे तकरार तां हथियारबंदनि फायरिंग करे सईद ऐं हाकिम कड़ियो खे क़तल कयो। इतलाउ ते गढ़ी खुदा दाख़िल कया।
0: धारूशाह भरिसां मञत में सहिड़ा माइनर माउ पीउ सां जो लाश हथ सुञाणप न थी सघी। ॻोठाणनि पुलिस खे इतलाउ बाद लाश शाख मां कढी मञत अस्पताल पहुचायो। पुलिस मूजिब लाश जी सुञाणप न थी सघी आहे, वधीक जांच करे रहिया आहियो। थाणो गुला खान भरिसां नामालूम शख़्स जो चिचिरियल हालत में लाश हथ आयो आहे। पुलिस मूजिब फौतीअ जी उमिरि 65 साल ॿुधाई रहिया आहे। लॻे थो त पीउ खे कंहिं गाॾी टकर हयो आहे। संदसि चेहरो चिचिरियल आहे, सुञाणप लाइ कोशिश करे रहिया आहिनि।
1: ऐं खेरापुर वेझो नागनीगर समेत टिनि ॼणनि खे कखे विधो इस्पताल मुंतकिल। ॻोठु अला बचाए जतोई में नौजवान अशरफ जतोई खे नांग कखियो। ॻोठु मिठड़ीअ में बि रांदि कंदड़ नीगर काशिफ दस्तीअ खे नांग कखियो। ॻोठु सावण में हारी बेगलीअ खे ज़मीन ते कम दौरान नांग कखियो। नांगनि जा कखियल टई ॼणा इस्पताल मुंतकिल।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमालु करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
5: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03132525786।
6: जी हा, 3315525786।
5: GAFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: खूब सुनिए।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रोबीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
5: अमर सिंध जे सींध में हिक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: imagine.
1: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: वजीर आजम शहबाज शरीफ सां एनडीए में चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर जी मुलाकात। एनडीए में चेयरमैन वजीर आजम के मुल्क में बरसाती सूरत हाल बाबत अगवाट कयल कदमन बाबत ब्रीफिंग डिनी। वजीर आजम शहबाज शरीफ बरसात हिदायत कदे चयो त मुतासिर थियल पुलन ऐं रस्तन जी तामीर बि यकीनी बणाई वञे। वजीर आजम शहबाज शरीफ सां केपी जे गवर्नर फैसल करीम कुंडी भी मुलाकात कई। केपी जी सूरत हाल ते ॻाल्हियूं सहकार जारी रखण ते इतफ़ाक। लबनानी घरू वजीर जी घरू वजीर मोहसन नकीअ सां मुलाकात। बितरफ़न लागापन समेत खिते जे सूरत हाल ते ॻाल्हियूं। बिन्ही अॻवाणनि जो मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। लबनानी घरू वज़ीर खे घरू वज़ारत जे आफ़ीस पहुचण ते सलामी बि ॾिनी वई।

0: मोहम्मद बिन सलमान अॼु मिसर पहुचंदो, मिसरी सदर ऐं ॿियनि सां मुलाकातूं कंदो। खिते जी सूरतयाल समेत ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि ते ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं। यूएई जे बि परदेही वज़ीर जा मिसर, कतर ऐं कुवैत जे हम मुंसिबनि सां राब्ता। खिते जी तब्दील थींदड़ सूरतयाल ते मुशावरत कई।
1: तेल ऐं आबनारम जी सूरतहाल हाणे तब्दील थी चुकी आहे। ईरान जा शर्त क़बूल करण ताईं ॻाल्हियूं न थींदियूं। ईरान जे क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार मोहसिन रज़ाई चयो आहे त अमरीकी सदर कॾहिं चवे थो ॻाल्हियूं न थींदियूं ऐं कॾहिं ॻाल्हियुनि लाइ तयारु हुजण जा बयान ॾे थो। संदसि बयाननि ते कंहिंखे गुमराह न थियणु घुर्जे।
0: सूरत में वथाउ रखणु घुर्जे। वफ़ाक़ी आईनी अदालत जे चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान तकरीब खे ख़िताब कंदे चयो आहे त आईन ते अमल करण खे मुआशिरे में इस्तेहकाम आणे सघिजे थो। नई अदालती साल में इंसाफ़ जी फरहमी वारो अज़म वरजायूं था।
1: कराची जे इलाइक़े क्लिफ्टन में प्लाटनि जे गैर कानूनी अलाटमेंट वारे केस जे एहतसाब अदालत में ॿुधणी। वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ऐं ॿिया पेश न थिया। एहतसाब अदालत वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ऐं ॿियनि खे नोटिस जारी करे छॾिया। समूरनि जवाबदारनि खे 1 अक्टूबर ते तलब करे वरितो।
0: मीर रज़ा केस जे अदालती जा जारी जात आफ़ीसर कमीशन में वधीक दस्तावेज़ जमा कराए छॾिया। डीएसपी सिराज लाशारी पारां जमा करायल दस्तावेज़नि में शाहिदनि जा वधीक बयान ऐं डायरी बि शामिल। जात आफ़ीसर मीर रज़ा जे साथी अहसान अनीस जो बि हलफ़नामो बि जमा करायो।
1: नओं देरो भरिसां पुराणे तकरार तां हाज़िरीअ ते वेंदड़ ॿ ॼणा क़तल। गढ़ी खुदाबख़्श भुट्टो थाणे जे हद सिम शाख वटि पुराणे तकरार तां हथियारबंदनि फायरिंग करे सईद ऐं हाकिम कड़ो खे क़तल कयो। इतलाउ ते गढ़ी खुदाबख़्श भुट्टो थाणे जी पुलिस पहुची लाश तवील में वठी पोस्टमार्टम लाइ नओं देरो इस्पताल मुंतकिल कया।
2: आप सुन रहे थे। GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
5: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9 खां 6:30 वगे शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
5: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03125252786।
6: जी हा, 2315525786।
5: GAFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

0: अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन दीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो।

ये आप आते बहुत ही खूबसूरत सा कसीदा जिसे हम सब मिलकर सुन रहे थे और इसके साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों के साथ बातें होंगी लेकिन साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो शामली प्रोग्राम कैसे होने वाले हैं ये भी आप लोगों को जरा बताएंगे तो अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप ऐसा करेंगे हमें ज्वाइन करेंगे लेकिन सबसे पहले जो है ना आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होने वाला है वो जरा आप लोगों को बता देते ताकि अगर आप हमें मैसेज करें शामली प्रोग्राम हो जाए तो आज का सवाल आप लोगों को पता होना चाहिए तो अगर आज के टॉपिक की बात की जाए तो मेरा सवाल आप लोगों से कुछ यूं होगा कि आप सारे लोग मुझे बताइए हाँ भाई हम बहुत सारी ख्वाहिशात कर लेते हैं अपनी जिंदगी के अंदर कि भाई ये भी हो जाए काश ये भी हो जाए काश ये भी हो जाए और जब ये हम छोटे होते थे बच्चे होते तो हम ये ख्वाहिश बहुत ज्यादा कर रहे होते थे कि काश पेशन जो मी वैसे हाँ बिल्कुल यो काश त हर कहीं पानी जिंदगी में मुख्य लगे तो लाजमी कर तो आज मुख्य यू बुधायो अगर वो काश तुम्हारा पूरो थी वने यानी कि हाँ पेशन जो मी वसे तो तुम केतरा पैसा उतना खड़ यानी कि असो ये होंगे ना बाबा पैसन जो मी वसे तो एतरा पैसा खड़ी तो आज मुख्य बुधायो अगर हाँ पैसन जो मी वसे तो केतरा पैसा उन मी में खड़ा ठीक है अगर आप हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनना चाहते हैं और शामली प्रोग्राम होना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए अपना सेलफोन उठाइए मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए अपना नाम लिखिए पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं ज्वाइन करना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है नाम आप सर्च करेंगे आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है वहाँ पर आप जैसे ही आएंगे तो आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे तो पोस्ट को लाइक किया करें लाइक करने से ये होता है कि भाई हमारी जो पोस्ट होती है ना वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाती है तो अगर आप ही चाहते हैं भाई आपके साथ साथ बहुत सारे लोग मजीद हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहें उनको भी पता चले कि भाई यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के चर्चे हो रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप लाजमी लोगों तक हमारी पोस्ट को पहुंचाइए ठीक है दोस्तों को भी मेंशन कीजिए उनको भी पता होना चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए अवेलेबल हो चुकी है तो जल्दी जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और मुझे बताइए अगर पैसों की बारिश हो जाए तो आप उस बारिश में से कितने पैसे उठाएंगे ठीक है जी और इसके साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ साथ आप लोगों को डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है यानी कि अब तो भाई डबल मजे हैं आप लोगों के अगर आप ये सोच रहे हैं कि डी स्किन का फेस वॉश हम लगाएंगे लेकिन क्या भाई क्वालिटीज हैं डी स्किन के फेस वॉश की तो आप लोगों को मैं बताऊंगी भरपूर पूरे प्रोग्राम में वो तमाम बातें जो कि जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं कई मरतबा मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनको कख पता नहीं होता अपनी स्किन के बारे में लेकिन हाँ उनको जो भी प्रोडक्ट बताया जाता है ना वो इस्तेमाल करने लग जाते हैं और जो भी प्रोडक्ट आपको बताया जाए उससे पहले आप उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज जान लें आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करें तो ये क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब आपकी स्किन सेंसिटिव हो या फिर आप अपने चेहरे पर कोई भी प्रोडक्ट आसानी से नहीं लगा पाते हैं तो अगर आपकी सेंसिटिव है ना तो उसके ऊपर वैसे भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और ऐसे उठाकर सारे प्रोडक्ट्स नहीं लगाने होते हैं तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो ये चीजें आप जरा उसके अंदर देखा करें कि वो ऑल स्किन टाइप के लिए है या फिर नहीं और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जिक्र आता है तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये जनाब मेडिकेटेड फार्मूले के साथ तैयार की गई और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की यही बात मुझे खास बनाती है डी स्किन को कि भाई ये मेडिकेटेड फार्मूला है जिसे हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है हर स्किन वाला लोग जो है ना वो आराम से डी स्किन ब्यूटी क्रीम को लगा पाएगा चाहे आप मर्द हजरात हैं चाहे आप खवातीन हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप सब लोगों के लिए तैयार की गई और इस तरह तैयार की गई है कि इसे हर इंसान लगा पाए तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम बहुत सारी बातें हैं सारे प्रोग्राम में बताऊंगी लेकिन यहाँ पर आप मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं तो बिल्कुल आपके फीडबैक्स की जाने भी आ जाएंगे आपने बस पोस्ट को लाइक और शेयर जो है ना वो जरा कंटिन्यू रखना है और एसएनएली भुगटी भाई हमें सबसे पहले ज्वाइन कर चुके हैं लाड़काना गोठ रूहल खान भुगटी खान एसएनएली भुगटी असा के ज्वाइन कर चुके हैं बहुत शुक्रिया भाई जान और फरवा कहती है अस्सलाम वालेकुम गुड आफ्टरनून हैव अ नाइस डे हाय आप ही आप कैसी हैं मैं ठीक हूं फरवा बताएं कैसी हैं और फहीम शेख हमारे साथ ही लिखते हैं कि विसरे सारो लोग शाला न विसरे तू तो के केडो मु सांढियो आए सा हमें अस्सलाम वालेकुम मौलैली सलामत अदा छा हाल आए खुश आयो सफा चा को स्लेट कल मस जी डबी असा भी रुलंदा फिरंदा अची गया सी प्रोग्राम तो लाजवाब आए हमेशा जी आम आवांगे बहुत शुक्रिया प्यारे भाई और फरवा कहती हैं आप ही अर्ज किया है कैसे भुला देते हैं लोग तेरी
तेरी खुदाई को, क्या रब मुझे तो तेरा बनाया हुआ एक इंसान भुलाया नहीं जाता। ओके ओके वेरी नाइस। अच्छा चाचा खालिद हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम। कहते बेटा सिडो हाउ आर यू, हो फाइन। जी माँ सब ठीक है, ताम बता की आयो। कहते हैं थैंक्स फॉर कमिंग टूडे इन दी स्किन ब्यूटी शो। मैंने तो आना ही था, क्या मतलब मैंने नहीं आना था। चले बहुत शुक्रिया, आप भी आ चुके हैं। और रशीद खोजो भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और आप हमें हैदराबाद से सुन रहे हैं, थैंक यू। अली रजा भाई हमें सुन रहे हैं, जी अली रजा भाई हमें दुबई से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और जी फहीम भाई लिखते हैं कि भाऊ जैसा फरमाइश न कंदासी जो सफा भला बारत ही आया आयो। ओए बाबा ओए सब रोज भला बारत ही अचो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करना रहो। और कहते हैं कि मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। वाह वाह वाह वाह। अच्छा मोहम्मद मीरन जखरानी हमें सुन रहे हैं, जेकब आबाद से बहुत शुक्रिया। और आसिफ अली हमारे साथ कहती है अस्सलाम वालेकुम, आसिफ अली कुरेशी फ्रॉम नूरियाबाद। भाऊ असां भी अची वयासीं तवां जे प्यारे शो में, हम आप और आपकी पूरी टीम के बड़े। अच्छा यानी कि आप शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल में मुझे बात जरा समझ नहीं आई। कहते आपने हमारे सिटी में अपना शो स्टार्ट किया है, हम आपको नूरियाबाद में वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया नूरियाबाद वाले भाई को वेलकम कहते हैं। इकबाल आशारी आप हमें सुन रही थी मीरपुर खास से, आपको भी खुशामदीद कहा जाता है। और मोलाई मुजाहिद बोजार कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम अस्सलाम। नवाब अकेले अकेले, अच्छा आप आ चुके हैं अकेले अकेले, सही कहते। कैसी आप आज? अच्छा आज फारिग था, सोचा आपका असर खाऊं। और सिडोर जी तबीयत ठीक है आपकी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। और आप हमें सुन रहे ठूफ चूसल से, और आप मुझे बताएं आपके एरिया में डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है नहीं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बस आप जाएंगे और परचेज करके आ जाएंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो, डी स्किन फेस वॉश हो, ये दोनों चीजें आपकी खूबसूरती को बढ़ा देंगी जनाब। तो जाइए परचेज करके आइए और टॉपिक को जरा फॉलो करते जाइए। और यहाँ पर टाइम हो जाता है जरा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानब जाए, और आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ये बातों के सिलसिले को जारी और सारी रखा जाएगा पूरे पूरे 3 बजे तक। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इस्तेमाल कीजिए और हसीन होते जाइए।

0: इट्स वन
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कम्प्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत जवाबित लागू हैं।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321 2230।
4: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग 9:30 to 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: FM 88
1: सिंध की आवाज जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 8:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

बिल्कुल वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएमएटी नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तावन से। यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि अगर आप अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना चाहते हैं, हमेशा खूबसूरत बनना चाहते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए तैयार की गई है। और इसी के साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरतियां हासिल करते जाइए। अच्छा, तो यहाँ पर आते हैं जरा डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये जाना आप लोगों के लिए जरूरी बात बन जाती है। मैं वैसे भी आप लोगों को कहती हूँ कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट का इंतखाब करें तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, पहचान लीजिए कि वो प्रोडक्ट आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि भाई आप लोगों के लिए तैयार की गई है, ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है। और मेडिकेटेड फार्मूला मतलब इसे तैयार किया गया है स्किन से रिलेटेड जो डॉक्टर्स होते ना, बिल्कुल उन्होंने बनाई है डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीड्स हैं, माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन है, अल्फा आर्बुटीन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है। ये तमाम चीजें मिलकर जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार कर चुके हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारी स्किन सेंसिटिव है, कोई भी प्रोडक्ट जल्दी से सूट नहीं करता, तो क्या हम लगा सकते हैं? बिल्कुल जी, आप भी लगा सकते हैं, सारे लोग ही लगा सकते हैं। चाहे आप मर्द हसरात हैं, चाहे आप खवातीन हैं, चाहे आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, हर तरह की स्किन के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ साथ एक और बात भी आप लोगों को बताते चले, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ये जो विटामिन ई बीड्स और माइक्रोबीट्स का मैं जिक्र करती हूँ ना, तो ये जो चीजें हैं यानी कि विटामिन ई बीड्स और माइक्रोबीट्स, ये पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 से 3 प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर ऐड की गई है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम यस उन्हीं में से एक है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर के ममालकात में भी मिलने वाला प्रोडक्ट है, तो बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का प्रोडक्ट है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ये जो विटामिन ई बीड्स और माइक्रोबीड्स फार्मुलेशन है, ये जनाब ऐसा आपकी स्किन के अंदर काम करते हैं जैसा आपने देखा होगा बहुत सी खवातीन को जो कि भाई बड़े महंगे महंगे फेशियल्स करा की आती है, और महंगे महंगे फेशियल्स कराने के बाद जो उनको अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है ना, बहुत सारे पैसे देने के बाद, बहुत सारा वक्त देने के बाद, तो बिल्कुल विटामिन डी बीड्स और माइक्रो बीड्स जो है ये वैसा ही काम आपकी स्किन के ऊपर करने वाले हैं। क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये 2-in-1 फार्मूला है, यानी कि ये आपके चेहरे पर फेशियल का निखार देने वाली एक नाइट क्रीम है। यानी कि अब ऐसा वाला सीन हो जाएगा कि आपकी खूबसूरती जो है ना वो बढ़ती रहेगी, आपके पैसे भी थोड़े कम खर्च होंगे और आपका टाइम भी बचता रहेगा। बिल्कुल जी मुनासिब सी कीमतों में आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है, तो इससे मुझे ये लगता है कि फायदा उठाना चाहिए। और फायदा उठाइए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ 2 रातें अगर आप इस्तेमाल करते हैं मुकम्मल, तो आपके चेहरे पर अच्छे खासे रिजल्ट आपको नजर आना स्टार्ट हो चुके होते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम मर्द हजरात तीन हर कोई आराम से इस्तेमाल कर सकता है, तो इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरती का ख्याल रखते रहिए। वैसे भी अगर आप अपनी खूबसूरती को सही वाले प्रोडक्ट नहीं देंगे, अपने चेहरे को नहीं पहचानेंगे कि भाई आपके चेहरे को किस चीज की नीड है, तो आपको सही वाला हुसन कैसे मिलेगा? तो अगर आप भी परेशान हैं, स्किन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको परेशान कर रही हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम है ना, जाइए परचेज कीजिए और इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। अच्छा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ मैंने बताया कि डी स्किन फेस वॉश भी मार्केट में इन हो चुका है। तो डी स्किन का अगर फेस वॉश यूज करना चाहते हैं, क्योंकि कई मरतबा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम क्रीमें नहीं लगाते हैं, चलिए अगर आप क्रीमें नहीं लगाते हैं तो आप डी स्किन का फेस वॉश जरा ट्राई करके देखिए। और फेस वॉश की क्या ही बात बताऊं, इतना जबरदस्त है, इतना प्रीमियम क्वालिटी का है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि सिद्रा इतना क्यों बताते हैं। बिल्कुल जी इस्तेमाल कीजिए डी स्किन फेस वॉश जो कि हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, मॉइस्चराइज रखता है और आपकी स्किन को क्लीन करता है। तो डीपली क्लीन अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी स्किन होनी चाहिए, तो डी स्किन फेस वॉश का यूज तो बनता ही है। और डी स्किन का फेस वॉश जो है ना, ये बड़ी कमाल की चीज है, तो इसे मैं चाह रही हूँ कि आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, चाहे आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएं, डी स्किन फेस वॉश लगाएं, भाई हर तरह से आपकी खूबसूरती आपको वेलकम कर रही है, तो आप भी जरा अपनी खूबसूरती को वेलकम कीजिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश का यूज करते जाइए। अच्छा, बहुत से लोग इस चीज को लेकर परेशान होते कि भाई हमारे एरिया में तो मिल नहीं रहे हैं प्रोडक्ट, तो हम क्या करें? भाई आपके अगर एरिया में नहीं मिल रहे प्रोडक्ट तो आप घबराते क्यों हैं? आपको जो नंबर बताऊंगी ना, बस उन नंबर्स के ऊपर आपने
رابطہ کرنا ہوتا ہے اور جیسے ہی آپ رابطہ کریں گے تو آپ کے قریبی جنرل اسٹورس پر ڈی اسکن بیوٹی کریم اور ڈی اسکن فیس واش اویلیبل کرا دیا جائے گا. تو جلدی سے ڈائل کیجیے 03-12-50-25-907 بڑی 312 50-25 970 ایم یو نمبر ہے 03-27-38-4309 بڑی 332 ہے بالکل. اگر آج آپ ایسا مجھے مطلب بتائیے کہ ہاں جی آج اگر پیسوں کی بارش ہو جائے تو آپ اس بارش میں سے کتنے پیسے اٹھانے والے ہیں, ہاں جی یہ بات مجھے بتائیے. اور ساتھ ساتھ آپ مجھے 888 اور

कहाँ कहाँ पर अवेलेबल कराने अभी बाकी है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हर जगह अवेलेबल हो चुके हैं, लेकिन हाँ अगर आपका सिटी आपका गांव रहता है तो क्यों रह रहा है भाई। नंबर के ऊपर रब्ता कीजिए, अवेलेबल कराइए और खूबसूरत हो जाइए।

ओवैसे यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, आपके फीडबैक्स की जानब आ जाते हैं, कौन सी बातें चल रही हैं देखें तो जरा। अच्छा पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिएगा। यहाँ पर एस एन आर बाणी हमारे साथ कहती है अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सलामदर। ओ माय फेवरेट आरजे मेटा मुस्कान जी, कैसी हैं आप? मैं भी आ गया, वेलकम। आपको भी वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया। सालार सिकंदर हमारे साथ मौजूद है, सालार सिकंदर आपको खुश आमदीद कहा जाता है। आसिफ भाई कहते हैं कि भाऊ गानों तो बुधाए जो बबई तव्हां कसीदो फरमाइश कयो आहे, कसीदो सां प्रोग्राम जी स्टार्टिंग में लॻाईंदा आहियो, सो सुभाणे तव्हां सां हलाईंदासीं, ठीकु आहे? और कहते कि भाऊ पैसों की बारिश किस इलाके में होगी, हर जगह ही होने वाली है। तैयारी पकड़िए जरा आप। अच्छा मौलाई मुजाहिद बोजाल लिखते हैं कि टॉपिक, अगर पैसों की बारिश हो तो मैं जब तक पैसों की बरसात बंद ना हो तब तक उठाता रहूंगा और बाद में गिन के बताऊंगा। ओके ओके, वैसे लॉजिकल बात है। अच्छा चाचा खालिद कहते हैं कि मैं पैसों की बारिश से बस इतने पैसे उठाऊंगा जिससे मैं, अच्छा सही बात है भाई, अच्छी बात है। और यहाँ पर किशोर भाई कहते हैं कि सलाम अदा स्मार्ट आयोवा, बस चाय पानी जो इंतजाम कर बाकी आम फुल लाया। वो भी पिए चुआ। मजाक मजाक बिल्कुल, तांगे चाय प्यारींदासी, बबा थदो भी प्यारींदासी। अच्छा उन्हें खिलावा साजिद अली कहते हैं सिंजी रानी सबकी, हाँ जी हाँ जी, बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? साजिद भाईजान प्रोग्राम सुन रहे हैं, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं।

आउं ॾिसां पियो जीअं लाइव ते अचां थो, लाइव बंदि थो थी वञे, कमेंट हितां वञनि पिया, तो वटि अचनि न पिया, छा मसलो आहे? न न, कमेंट तव्हांजा बिल्कुलु प्रॉपर मूं वटि अचनि पिया, रीड बि थियनि पिया। तव्हां ॾिसी वठो तव्हां वटि कोई मसलो हूंदो शायदि। किथे कल्ह शाम बि हिकिड़ो कॉमेंट बि रीड कोन थियो थिया हुआ, बाबा मूं पाण कया हुआ। पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। मैंने आज आप लोगों से पूछा है कि अगर फर्ज कर लीजिए पैसों की बारिश हो जाए तो आप कितने पैसे उठाने वाले हैं? ओके जी, टॉपिक को फॉलो कीजिए और दोस्तों के साथ हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए, क्योंकि शेयरिंग इज कैरिंग होती है। जितना आप शेयर करेंगे पोस्ट को, उतने सारे लोगों को हम बता पाएंगे कि आप सब लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को उन तमाम डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है जो कि भैया की स्किन से रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं। और इसी के साथ साथ जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करते हैं ना, तो इसके ऊपर भी आप लोगों को डॉक्टर औरत का फोटो नजर आएगा या निशानी आहे, निशानी के तौर ते तव्हां समझी वठो। अगर तव्हां दुकानदार वटि वञो था, उनखे चओ भाउ डी स्किन ब्यूटी क्रीम ॾे, ऐं हू तव्हांखे का ॿी क्रीम पकड़ाए छॾे, तव्हांखे ख़बर न हुजे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे कीअं, त इहा तव्हांखे ख़बर हुजे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे मथां डॉक्टर माइक जो फोटो अथव, सही आहे? ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम इहा निशानी ॾिसी करे तव्हां वठी सघो था। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां तव्हां डी स्किन जो फेस वॉश भी लाज़मी वठिजो, ॿई चीज़ूं गॾु इस्तेमालु कजे, तव्हांखे ख़ूबसूरती मिले मुकमल तरीक़े सां।

हाँ जी, कभी कभी वाकई में चीजें भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता हो सकता है, वैसे मैं खुद ही सोच रही थी पीछे किए थे या नहीं किए थे। चले बहुत शुक्रिया। अच्छा गाना सुन रही, बहुत ही खूबसूरत सा। बिल्कुल जी, कोशिश किया करें प्रोग्राम में, अगर आप मुझे फरमाइश कर रहे हैं तो गाना ऐसा होना चाहिए जो प्रोग्राम में चलने जैसा होना चाहिए। यानी कि कई मरतबा आप ऐसी फरमाइश करते तो थोड़ा सा मरा हुआ गाना होता है, तो जिंदा जिंदा गानों की फरमाइश किया करें। अच्छा इरम भी हमारा शो सुन रही है, इरम थैंक यू वेरी मच, बस दुआ कीजिएगा। जाकिर अहमद हमारे साथ है, जाकिर अहमद भाई आपको वेलकम कहते हैं बहुत शुक्रिया के साथ। गोट मोहम्मद तैयब थेबू का हबीबुल्ला थेबू हमारे साथ है, तव्हां जो शो वेरी नाइस आहे, सॉन्ग बुधराए जो शमन जो, बिल्कुल शमन जी गाने जी फरमाइश तव्हांजी पूरी कंदासी। अच्छा अच्छा खाले, तव्हां भी पैनल ते मौजूद आहे, तव्हां भी गाने जी फरमाइश कई आहे, ॾिसो कहिड़ो गानो फरमाइश कयो अथव। और कहते हैं कि आप आती हैं तो शो करने टाइम अच्छा पास हो जाता है, बाकी दो दिन से आपने अपनी परंपरा नहीं निभाई बस मैं जरा सैडी गाने सुनकर बड़ी बेजार हो चुकी हूँ, तो जरा आप अपनी चॉइस को चेंज कीजिए। तो अताउल्ला मरी हमारे साथी विलेज रमजान मरी मीरपुर खास से आप हमारा शो सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया जी। मीरपुर खास में हर जगह डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है, तो जाइएगा और परचेज करके आइएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी मुझे जरा बताइए, ताकि मुझे पता चले कि कितने सारे प्यारे प्यारे लोग हैं जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा अब्दुल्ला महर हमारे साथ ही मीरपुर खास से कहते हैं कि डी स्किन अच्छी क्रीम है, मेरी फैमिली इस्तेमाल करती है, ये देखें भाई। अब्दुल्ला भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं, इस्तेमाल करते रहिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम। वैसे अब डी स्किन का फेस वॉश भी मार्केट में आ चुका है, तो वो भी ट्राई करके देखिएगा।

अच्छा नजीर कोसी बलूचिस्तान से कहते हैं कि किसी को इतना प्यार दो कि गुंजाइश ना छोड़ो, अगर वो फिर भी तुम्हारा ना बन सके तो उसे छोड़ दो, क्योंकि वो मोहब्बत का तलबगार ही नहीं बल्कि वो जरूरत का पुजारी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया हो गया। अच्छा मेरा वाकई स्किन के बारे में पढ़ पढ़ के और जान जान के इतनी तो नॉलेज हो चुकी है कि अगर मैं स्किन की डॉक्टर बन जाऊं तो आराम से बन सकती हूँ। हाँ मुझे बड़ी नॉलेज हो चुकी है। तो बिल्कुल आप देश स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा स्मार्ट भाई लिखते हैं कि टॉपिक आप सिर्फ इतरो पैसो खनदस जेतरो अंबानी वटा है, बस बस इतरो बस तई था चो। चलें क्या बात है, गाना एंजॉय कीजिए। और यहाँ टाइम हो चुका है जरा न्यूज ब्रेक की जाने जाएंगे, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होंगे। वापसी जल्दी आप लोगों के पास, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाएगी।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
2: जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
4: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जे तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुब्तला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3404-287। सुकून, एतमाद ऐं

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो नतीयण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमाती 347-3241-230
0: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163
1: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03132525786
1: जी हा 3135525786
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

0: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
1: अवेलेबल करा देंगे, ठीक है जी। बिल्कुल आसानी से आपके करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल हो जाएंगे। खूबसूरतियाँ हासिल कीजिए, खूबसूरत बने रहिए, क्योंकि ये आप डिजर्व करते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप ये चाहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी स्किन बड़ी सेंसिटिव है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा पाते हैं, तो आप क्यों घबराते हैं, आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी बात, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये जनाब एक मेडिकेटेड फार्मूला है। और मेडिकेटेड फार्मूला तो इसका मतलब ये है कि भाई इसे हर कोई इंसान जो है ना वो आराम से इस्तेमाल कर सकता है। और स्किन के डॉक्टर्स ने मिलकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार किया है, तो बस गाली खत्म थी वही ना बाबा साहब। तो तुम्हारी स्किन अगर सेंसिटिव है या फिर कॉम्बिनेशन टाइप आहे, कड़ी भी स्किन के मथा तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सको था। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो नालो तुम्हें खबर अजन घुर्जे, अगर तुम मार्केट वनो था, परचेज करण वनो था, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम नालो वठी करे तलब कयो, ठीक आहे। डी स्किन ब्यूटी क्रीम की थोड़ी अगर निशानी तुम्हें बुधाई वे, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के मथा एक डॉक्टर माइक जो फोटो अव ओ यहाँ अव डी स्किन ब्यूटी क्रीम बिल्कुल ही सुने वनो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम के मथा डॉक्टर माइक जो फोटो आ, यानी कि डॉक्टर्स मिली कर तैयार कया, तदे डॉक्टर माइक जो फोटो जो सोनी डॉक्टर ही उन्हें तो तुम भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सको था। डी स्किन तवां जी भी खूबसूरती के सफा नेक्स्ट लेवल से वठी वेंदी। ऐं तवां जी खूबसूरती अगर थोड़ो तवां के परेशान करी रही आहे, तवां पहिरियां त खूबसूरत हूंदा हुआ, पर वक्त जीअं गुज़रे पए तवां जी खूबसूरती थोरी डिम थी वई आहे, तवां जी स्किन थोरी मतलब बेजान थी वई आहे, बेरोनक थी वई आहे, तवां जे चेहरे ते जेको निखार आहे, ग्लो आहे, उहो कॾहिं गायब थी वियो आहे, त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सघो था। छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे इस्तेमाल खां फौरन बाद ई तव्हां जी स्किन ते निखार अचण शुरू थी वेंदा, तव्हां जे चेहरे ते जेके रिंकल्स आहिनि, फ्रिकल्स आहिनि, ब्लैक हेड्स आहिनि, व्हाइट हेड्स आहिनि, या फिर स्किन डिम थी वई आहे, डल थी वई आहे, त हर मसले जो हल आहे बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ 2 दिनों में वाज़े नतीजे आपको देने वाली है, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लाजमी इस्तेमाल करके देखिएगा। जदीद अज़ा इसके अंदर एड की गई है, जैसे कि विटामिन ए बीट्स, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन, अल्फा आर्बुटीन, कोजिक एसिड, ग्लूटाथायोन, ये तमाम चीजें जो है ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर एड की गई। और ये क्रीम रात भर काम करती है आपकी स्किन के ऊपर, आपकी जिल को चमकदार बनाने के लिए, डार्क सर्कल्स को हटाने के लिए, आपके चेहरे पर निखार लाने के लिए, और बहुत सारी जो स्किन होती है ना जिन लोगों की भाई आपके चेहरे पर जो है ना वो ऐसा होता है कि वक्त से पहले आप बूढ़े नजर आना स्टार्ट हो चुके होते हैं, क्योंकि आपके चेहरे पर काफी ज्यादा रिंकल्स आ चुके होते हैं, तो उन तमाम चीजों से भी आपको महफूज रखने वाली है डी स्किन ब्यूटी क्रीम। आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करके चमकदार बनाने में डी स्किन ब्यूटी क्रीम आज भी पहले नंबर पर है, और आपकी जल्द की साख्त बेहतर बनाएगी। आपकी स्किन जो है वो आपको एहसास होगा भाई बहुत खूबसूरत होती जा रही है, और स्किन नरम और मुलायम हो जाएगी, सॉफ्ट सॉफ्ट ग्लोइंग स्किन अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा। और इसके अलावा हर स्किन के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल जी, तसल्ली रखिए, इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरतियाँ हासिल कीजिए। अच्छा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है। अगर आप फेस वॉश का यूज करना चाहते हैं, क्योंकि कई मरतबा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं सिर्फ फेस वॉश हणदा आहियूं, तो काई मसले जी गाल कोने का तमाम फेस वॉश लगाए सको था। डी स्किन जो फेस वॉश अगर गाल कई वने तो खूबसूरती और फ्रेश लुक के लिए सिर्फ मेकअप ही काफी नहीं होता, बल्कि आपके दिन का आगाज एक अच्छी स्किन केयर रूटीन के साथ होना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और हमारी जल्द जो होती है ना, दिन भर बहुत सारे काम करते हैं, पसीना हो जाता है, या फिर ऑयल जो है वो काफी ज्यादा जमा हो जाता है, या फिर डस्ट पोल्यूशन वगैरह, ये तमाम चीजें आपकी स्किन के अंदर जमा हो जाते हैं, इसलिए आपके चेहरे की सफाई को अपनी रोजमर्रा रूटीन का लाजमी हिस्सा बनाना ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और उसके लिए आपके पास डी स्किन फेस वॉश मौजूद है जो आपकी रोजाना स्किन केयर रूटीन में एक बेहतरीन इजाफा ला सकता है। चेहरे को साफ करने के बाद ज्यादा आपको जो है ना स्किन को फ्रेश बनाएगा, साफ सुथरा आपको महसूस होगा, जिससे आपकी पूरी ब्यूटी रूटीन मजीद बेहतर हो जाएगी। तो डी स्किन फेस वॉश जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह हो, शाम हो या फिर रात के टाइम, तो लाजमी लगाइएगा और मुनासिब आपके चेहरे को जो है ना वो बेहतर बना देगा, फिर जल्द को देगा ताजगी। और जब फेस वॉश यूज करने के बाद आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तब तो भाई पार्टी बन जाएगी। तो डी स्किन फेस वॉश और डी स्किन ब्यूटी क्रीम दोनों चीजें साथ लगाइए। और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना ये हाइलुरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, तो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, क्लीन बनाता है और मॉइस्चराइज भी रखता है। तो डी स्किन फेस वॉश मार्केट में इन हो चुका है, जाइए लूट लो माल बाबा, परचेज करते जाइए और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल भी कराते जाइए। उसके लिए आपने डायल करना है 03-12-50-25-907। नंबर आहे बड़ी 312 50-25-970। ही नंबर अगर बंद हो जाए रिसीव न थे तो पोई तमाम बियो नंबर ट्राई करे सको था। आई बियो नंबर आहे 03-27-38-4309। बड़ी 312-73-84-309। ही नंबर से तमाम जी आसानी से लाए जी तमाम वनो बस पांजे करीबी जनरल स्टोर से नालो वठी तलब कयो आई पांजे खूबसूरती के जो एकड़ो नो एहसास सदा हाणी मार्केट में अवेलेबल आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश। हां बुधायो करें था इस्तेमाल कयो। अच्छा अगर तमाम भी इस्तेमाल कयो पया तो मुखे बुधायो जी अब्दुल्ला भाई बुधायो तो बाबा असानी पूरी फैमिली डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे रही आहे। अगर तमाम लगायो था या तमाम जी फैमिली मा कोई लगाए पयो तो मुखे बुधाईंदा कयो जी मुखे खबर पए त किथे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज थे पयो बाबा। उन खां अलावा अगर तां असानी प्रोग्राम में मौजूद आ त तमाम असा के 888 और फेसबुक ते ज्वाइन करी सगो था। फेसबुक ते जेके मानो से अगर मौजूद आन सबनी जो मोहब्बत हूं बाबा पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना कयो, पैसा कोन लगंदा मुफ्त में थी वेंदो। मां जवां का सवाल पुछो आ मुखे बुधायो अगर फर्ज कयो पैसन जो मी वसे ठीक आ तो तमाम केतरा पैसा उन मी मां खणदा। हां जी शो त इंसान डाढो माशाल्लाह लालची है। अगर असा के मतलब मिली वेंदी आ नेकड़ी चीज जका से चना काफी टाइम का सा सोची ना तो बाबा ये चीज असा के मिले आई जरे वा चीज असा के मिली वेंदी आ उन का पोए वरी असा के अन्या वडी चीज जी जको ना मतलब ख्वाहिश पैदा थी वेंदी आ है। सो वाके इंसान एक तो ना शुक्र आ बिडाढो लालची है। सथा बुदायो पंजी गाल कयो। अच्छा ही गानो हलायो आ ममताज मलई जी आवाज में, फरमाइश हुई बाबा के जी ममताज मलई जो गानो वठो ममताज मलई आयो था आवाज जो भलो गानो गाइंदो। सो आप रहे हैं व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए।

मेरे चाचू पुछे पियो माइक्रोबीट्स क्या है बेटा। माइक्रोबीट्स फेशियल जे अंदर एड कया वेंदा आहिनि जीअं उन फेशियल खे सफ़ा भली जेको आहे न रिज़ल्ट लाइ तयार कयो वञे। ऐं माइक्रोबीट्स जेका हूंदा आहिनि उहे तव्हां जॾहिं ही वीडियो ॾिसंदा फेसबुक ते जेका हले पई त जेके ही गोल्डन कलर जा बीट्स आहिनि उन्हनि खे माइक्रोबीट्स चइबो आहे। ठीकु आहे, उहे तव्हांजी प्रोडक्ट जी जेका मतिलब रिज़ल्ट हूंदा आहिनि उहा डबल ट्रिपल करे छॾींदा आहिनि। सो इहे ॾाढा पावरफुल हूंदा आहिनि। इन्हनि जो इस्तेमाल जेको आहे पूरे पाकिस्तान में सिर्फ़ ॿ या टे प्रोडक्ट कनि पिया जंहिंमें डी स्किन ब्यूटी क्रीम बि शामिल आहे। सो प्रीमियम क्वालिटी जो प्रोडक्ट आहे, वञो बाबा वठी अचो। और फहीम कहते हैं कि टॉपिक दादा मैं इतने पैसे उठाऊंगा जितने पैसों से मैं एक बड़ी फैक्ट्री खोलूंगा और लाड़काना के सारे चिंची ड्राइवरों को चिंची छीनकर उनको फैक्ट्री में काम दूंगा। इो भलो आ, इो सुठो मस्त आइडिया। और उन अलावा

अच्छा हैदराबाद कहते हैं सदरा, अब आपने हानिया आमिर का सॉन्ग सुना, मुझे तो मजा नहीं दे रहा था, बस पता नहीं क्या था और उनके अलावा साजिद भाई कहते हैं दोस्त मोहम्मद ताबिश भुट्टो, मोहम्मद बाकिर और शाकिर भुट्टो गाने जामिन जो गानो, अच्छा चलो जामिन जो गानो तुम्हें चलो मैं कोशिश यहाँ थी बिल्कुल हलाईंदा। दर्दी दिल कहती है ये नाइस बीजी है, थैंक यू दर्दी दिल। और उनका अलावा चाचू चाहे थो नंढपण में तो अन्या वहां भी आयो बेटा, हाँ मुझे अन्या बचपन हले थो, सही गाल है। और मुजाहिद बोजा लिखते हैं कि सिडो सिंधी में बात करती हो, उर्दू में बात करती हो, थोड़ा बलोची भी बोला करो, मां थाई वजी सिद्रा मुस्कान इंगो भी। बस।

अच्छा सदाम अली हमें सुन रहे हैं, सदाम अली भाई आपको भी खुश आमदीद हो गया। फैसल अहमदानी हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम फैसल कहते हैं। बेशर आबाद बोरी खां फैसल अहमदानी, थैंक यू जी, थैंक यू, वेलकम कहते हैं आपको, बहुत शुक्रिया के साथ। असा के भी याद करो, बिल्कुल भाजू मोहब्बत हुए था प्रोग्राम बुध पया। नसीम भाई कहते हैं हमारा गाना नहीं प्ले करती, कहानी सुनो जुबानी सुनो, माँ कोशिश क्या थी गानों हलाने की।

हाला वाल जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम केर के लगाए पे हथ माथे के बाबा डिसन चाया थी जगह सोना मानू वेठा ने सने प्रोग्राम में डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कन पया पोस्ट के लाइक शेयर कयो कंजूस इन छाजू आयन बाबा किशोर भाई कहते के मुखे तुजे शो जी हिकड़ी गाल वणंदी हुई तो कमेंट फौरन रीड कंदो होए अगर असा के गाने जी मश्करी कंदा हुआ सी तो ने टाइम रीड कंदो होए तो मजो इंदो होयो हां तारीफ इन गाने जी मिले लास्ट में गाने के तो मजो नहीं इंदो ना यह भी गाल है वैसे सही गाल है सही था चो कहते हैं कि जे मानू जा कमेंट मुखे नजर न था अचन ता चुप करे प्रोग्राम दो बाबा चा कना मानू जी कमेंट्स के वे मा हुई पढ़ा थी तो ता बस बुधी बैठो ठीक है देसो नजर बुधो ॾिसो तव्हां सिर्फ़ पंहिंजो सिन पंहिंजे आईने में जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु डी स्किन जो फेस वॉश बि अची वियो आहे मार्केट में सो तव्हां हाणे फेस वॉश बि वठी सघो था ऐं फेस वॉश अगरि तव्हांजे एरिया में नथो मिले डी स्किन ब्यूटी क्रीम पहिरियां खां अवेलेबल आहे त तव्हां हिकिड़ो कम कयो तव्हांखे जेको नंबर ॿुधायो आहे प्रोग्राम में उन नंबर ते राबितो करे वठो ठीकु आहे जो तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश ॿई मिलनि गुलाम फातिमा हमें सुन रही हैं गुलाम फातिमा चन्ना बिल्किस चन्ना अब्दुल कदीर चन्ना कुरेशी गोट सखर से आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया है बहुत शुक्रिया जी रोजाना हमारा प्रोग्राम बड़े शौक से सुनते हैं थैंक यू प्रोग्राम को सुनते रहिए और आपके कुरेशी गोट सखर में डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है नहीं बताइए तो जरा खबर पवे बाबा न भी मिले थी अगर तो नंबर प्रोग्राम में बुधायो वे तो ना इन नंबर से राबो कर वा एक दफो कॉल या फिर मैसेज छी दियो वो पा ही तुम्हारे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल कराए छींदा हांजी बार चई वरी बार चई तो मुझे सुनने को मिलता है या फिर आपको भी ऐसा लगता है अच्छा नसीम गुलाम दीन भाई कहते हैं कि हमने वैसे क्रीम कभी यूज नहीं की लेकिन आपने बोला हमने यूज की डी क्रीम डी स्किन ब्यूटी क्रीम अब दिल करता है क्रीम को छोड़ू ही नहीं ॾिसो ॾिसो इहो कमाल अथव डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो अगर तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा त पोइ बिल्कुल ई नसीम भाई वांगुरु चवंदा त हाणे असां डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे कोन छॾे सघंदासीं छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम ॾाढी भली क्रीम आहे

इच्छा था ॿुधो संगत नाल जो गानो आहे तू ई मूंखे प्यारो सभ खां बाक़ी ॿियो कुझु न आहे घुरियो रब खां अलाए ईअं ई हुयो शायदि पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां इस्तेमालु कजो डी स्किन ब्यूटी क्रीम वञो बाबा दुकानदार खां घुरोसि हिनखे चओसि अदा डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल कराए अगरि नथी मिले त ईअं बि थींदो दुकानदार वटि तव्हां वेंदा दुकानदार खे चवंदा अदा डी स्किन ब्यूटी क्रीम ॾे हू अगरि न हूंदी हुन वटि त का ॿी क्रीम तव्हांखे ॾेई छॾींदो ऐं चूनो लॻाईंदो त बाबा ही हले वठी अॼुकल्ह ॾाढो भलो रिज़ल्ट अथव हे हो तव्हां हुनखे चओ भाउ हाणे ॻाल्हि अथई सिधी डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल कराए पोइ वठणु ईंदो मां बाक़ी ॿी क्रीम कोन वठी वेंदो मां सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम नालो ई काफ़ी आहे बाबा भई असां बि ॿार ॿार चई थकिजी पियासीं एतिरो मतिलबु हिन में ॿार ॿार लॻे पियो वाक़ई ऐं छा छा कहे तई की तव्हांजा हुकुम हलंदा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जा बंडल ख़रीद कंदासीं कयो बाबा ईअं कयो ईअं सफ़ा ईअं गोदाम खाली कयो।

आसिम भाई कहते हैं दी स्किन ब्यूटी क्रीम और फेस वॉश नूरिया बाद में दस्तियाब है या नहीं, ये तो आप नंबर के ऊपर राता करके उनसे मालूमात लीजिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का फेस वॉश नूरिया बाद में मिल रहा है या नहीं। तो वहां पर भी आप अवेलेबल करा सकते हैं, जल्दी से अवेलेबल कराए, नूरिया बाद के सारे लोग आप यूज कीजिए, ठीक है।

अच्छा हिदायतुल्लाह कहते हैं वैसे गर्मी बहुत है, पानी वाला मी वैसे तभी शुक्र करूंगा मैं। या भी गाला है। वफा शहजादो मक्सी हमारे साथ है भाई, आपको वेलकम कहते हैं, प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। अच्छा दर्दीतुल कहते हैं टॉपिक कोई हिसाब नहीं, सोच रही हूँ लंदन का वीजा जितना। अच्छा अच्छा दोनों जाएंगे कहती है, लेकिन फिर ये भी है कि पैसों की बारिश कौन करेगा। तो गाना ना बुद्धू थी मैं बारिश कर दूं पैसे की। शायद वही कर ले। और अलीजा भी हमारा शो सुन रही है, बहुत शुक्रिया अलीजा। और साकिब अली भाई वालेकुम अस्सलाम कहते हैं मैं मायरा हूँ। अच्छा मायरा हमारे साथ है, कैसी हो, शो आपका नाइस है, मैं आपका शो बहुत इंजॉय करती हूँ, थैंक यू वेरी मच मायरा। अच्छा ये ओपी मिल हमारे साथ है, ओपी मिल वालेकुम अस्सलाम, आपको वेलकम हो गया।

0: कोई मुखे प्यारो सब खां बाबा गाल तई सिद्धी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइण वारा माण्हू सोणा थी विया आहिनि सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो ऐं छा था चओ हाय मुंहिंजी हुसन जी छा ॻाल्हि आहे आऊं छा ॻाल्हि कयां जॾहिं खां डी स्किन जे प्रोग्राम में आयो आहियां आसूं टपकी प्रोग्राम में अचण सां आसूं टपकी पई वाह साईं वाह इस्तेमाल कंदा त पोइ सोचो किथे कमु पहुचंदो सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो तव्हां इस्तेमाल करे ॾिसजो सोणा सोणा थी वेंदा उफट मरी वेंदासीं जाइ ॿुधा वेठा हुजो टाइम थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो वापसी जल्दी मोटी अचां थी तव्हां करी न वञो हिते वेठा हुजो सफ़ा हिते जाते वेठा आहियो ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटूं था सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाई टेंशन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी स्किन ब्यूटी क्रीम के चर्चे हैं बाबा जाइए और जरा खर्चे कीजिए अपने ताकि खूबसूरत हो जाए
1: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
2: छा तव्हां जोड़नि जे सूर पुठनि जी तकलीफ़ कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि पुठनि कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287 ख़ात्माए दर्द कोरस सूर खां छुटकारो सुकून भरी ज़िंदगी
3: सोना सिर्फ ज़ेवर नहीं हर घर की अमानत होती है इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें शरायत जवाबित लागू हैं
4: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
5: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 0313086316 3
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
8: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
9: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
6: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
9: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
6: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
9: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 03132525786।
6: जी हा 2315525786।
9: GFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

0: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-8879 ऐं 0312-34-01-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
4: पाकिस्तान।

ओके जी ओके, क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं. व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तावन से. यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स ही जना जो कि आपकी स्किन के लिए परफेक्ट हैं. अगर आप भी स्किन को अच्छा सा एक प्रोडक्ट देना चाहते हैं, वैसे भी कभी कभार अपनी स्किन केयर करना, अपनी स्किन के लिए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट सेलेक्ट करना ये एक बहुत ही अच्छी सी बात होती है. अगर आप भी चाहते हैं कि भाई आप तरह तरह के जो प्रोडक्ट लगाकर बड़े बेजार हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं और आपकी स्किन भी खराब हो चुकी है, तो आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के फौरन बाद ही आपके चेहरे पर एक वाज़े नताए जो है ना वो आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे, जो आपको लगेगा कि हाँ भाई जान बाद में दम तो था. सदरा भाजी जो बताती है वो बिल्कुल सही बताती है. तो आप भी इस्तेमाल करके देखिए, खूबसूरतियों का ख्याल रखिए और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिए. अच्छा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश दोनों चीजें मार्केट में अवेलेबल है, बस आप जाएंगे और परचेज करके आएंगे. अच्छा, ऐसा फर्ज कर लीजिए कि अगर नहीं भी अवेलेबल हुए अभी तक, तो उसके लिए आपको नंबर्स बता रही हूँ, उनके ऊपर आप रابطہ कर लिया करें. नंबर्स को लाजमी डायल कर लें, नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ से अवेलेबल कराएंगे या फिर कहाँ अवेलेबल होने चाहिए, कहाँ कहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं, ये तमाम बातें जो कि आप उनसे पूछ सकते हैं.

दाम से, तो मैसेज कीजिए या फिर उन्हें कॉल कीजिए और बताइए आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम, या फिर अगर डी स्किन का फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। अच्छा तो जल्दी से डायल कीजिए 0332738439 बुड़ी ट्रे सो टेहत्तर चौरासी 309 ऐं ॿियो नंबर आहे 0312502597 ॿुड़ी 312 50 25 907

भाई मोर ॾाढो भलो नालो आहे। ओके जी, हुसन में भी जोर रहा वरी मोर भी। अच्छी बात है, अच्छी बात है। चले नंबर के ऊपर रहा कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल कराइए, इस्तेमाल करते जाइए और खूबसूरत होते जाइए। अच्छा, ये हमारे साथ मौजूद हैं जी मिर्पू खासी अब्दुल्ला महर के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी बड़ी जबरदस्त है, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। और ये हमारे साथ शहजाद अली राजपर, नंडड़ो जमीर अली राजपर फ्रॉम बसीरो अदी सिद्रा। असांजी बारिश अचे पोइ मज़ा ॾिसजां असांजा। ईअं न माना। हा बिल्कुलु बिल्कुलु। अच्छा मक़सूद मला कहे थे मेरा खां, हेलो सिद्रा मुस्कान। हांजी मुझे मास्टर मज़ूर का गाना सुनाना। अच्छा तव्हां थोरो लेट आया आहियो, पर शायदि मां तव्हांजो मैसेज लेट पढ़ियो आहे। ॾिसां अगर टाइम बचे तो तुम्हारी पसंद जो गानो हलाए वठूंगा, ठीक है, न तो सुभाणे बुधी वठंदासी। और ये हमारे साथ ही आपकी पूरे नेटवर्क को सलाम कबूल हो, शुक्रिया। 78 मोरी मीरपुर खास से राजा हमीरचंद हैं, किशोर कुमार, हीरा लाल, सुरेश इजी लोड वालो, सही सही, और अतिका क्यानी का मरवाड़ी था जो। अच्छा तव्हां मरवाड़ी में मैसेज लिखियो, बाबा एतिरी मूंखे न ईंदी आहे जेतिरो तव्हां मैसेज में लिखियो आहे। सो थैंक यू तव्हांजो मोबाइल।

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना सुन रहे हो। यहाँ पर फजली हमारे साथ मौजूद है, कहती है अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आर्य सिस्टर सिद्रा मुस्कान, कैसी हो डियर। सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात और सब स्वीट सिस्टर्स को। सॉन्ग अच्छे प्ले करो जानू, नो सैड, ओके ओके, सैड गाने नहीं लगाएंगे आगे से, ऐसा भी हो वचन वर्तू। और कहती है चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिएगा।

अभी बात मुझे समझ आई। वही वही वही बिल्कुल बिल्कुल आप सही समझे। और डे स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल कर रही तो हमारे साथ जरा शेयर किया करें, शेयरिंग इज केयरिंग होती है। मुझे कन्ना में बुधाई सरीना गया था, बाजी असा डे स्किन ब्यूटी क्रीम लगायूं था यार, ऐसा डे स्किन जो फेस वॉश लगायूं था यार, ऐसा इरादो कर छो तो हाँ इरादो भी तक इरादो को ना तरह तो वही वी ना सो इरादो कर बाबा डे स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर खूबसूरती के सफा ये वी आई पी बनाए छी चेहरे चार चंड लगाए छी। सो डे स्किन ब्यूटी क्रीम डे स्किन जो फेस वॉश

0: ਰੇਡੀਓ ਭਜਨਗਾਰਾ।
1: ਅੱਛਾ ਸਾਈਂ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਉ ਰਾਣਲ ਜੋ ਦੁੱਲ ਕਿਹੜੋ ਆਏ। ਹਾਂ ਰਾਣਲ ਖਾਂ ਪੁੱਛਣੋ ਪੈਂਦੋ ਮੁਖਾਂ ਛਾ ਥਾ ਪੁੱਛੋ ਮਾਂ ਨ ਰਾਣਲ ਕੇ ਸੁਣਾਣਾ ਨ ਦੁੱਲ ਕੇ ਸੁਣਾਣਾ। ਔਰ ਅਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੀ ਗਾਨੋ ਆਮ ਬਚਪਨ ਖਾਂ ਸ਼ਾਦਨ ਮੇ ਬੁਧਾਂ ਪਏ ਬਾਬਾ ਪੁਰਾਣੋ ਗਾਨੋ ਆਏ ਅਸੀਂ ਸਭ ਬਚਪਨ ਖਾਂ ਬੁਧੰਦਾ ਅਚਨ ਥਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ भैया आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगानी चाहिए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइएगा ठीक है। और अखलाक भाई कहते हैं कि यो केंजी शादी जो सेरो वा यो बाबा बस शादी केंजी भी कोने सामने यो हलाई छो है। वैसे फरमाश न गाने जी हुई सो ये उन्हें देख डेडिकेट आए पर ये मड़े बुझूंदा शादी कोने का छड़ा जे छोकरा ना वैसे ही चंदा शादी करो गानो वाला मतलब वो चंदा कदे तो थी सो असा फील वी बैठू मायरा कहती है डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपने यूज करी और आपको बड़ी अच्छी लगी डी स्किन ब्यूटी क्रीम। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। डी स्किन ब्यूटी क्रीम वाकई अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप भी यही कहेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेड़ो कोई भी कोने बाबा। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को मेडिकेटेड फार्मूलो है, डी स्किन ब्यूटी क्रीम 2-in-1 क्रीम है, यानी कि ही नाइट क्रीम था पर ही जदी तक इस्तेमाल करना तो तवा के फेशियल वारो रिजल्ट मिली सके। तो अगर तुम भी चाहता तो बाबा पैसा भी लाई खर्च न थे असा के मुनासिब कीमतों में भलो प्रोडक्ट मिली वे टाइम भी बची वे पर तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल सफा परफेक्ट प्रोडक्ट आए तुम सभी मानन के लिए तुम्हारी स्किन के सफा वीआईपी बनाए छी तो चेहरे के जी प्रॉब्लम्स आने सभी के खत्म कर दो गोरा चिट्टा प्यारा प्यारा थी वेंदा। डी स्किन ब्यूटी क्रीम है, डी स्किन फेस वॉश है, तुम्हारी स्किन के अगर खूबसूरती दियन चाहियो था तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आई डी स्किन फेस वॉश पांजे चेहरे के गिफ्ट करे छियो। हां जी, अगर आप अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश अपने आप को जरा गिफ्ट कीजिए। हां जी, कदे कदे पांजो पान के तोहफो दियन भी डाढो जरूरी होंदो आए। वरी अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम आई डी स्किन जो फेस वॉश पान के तोहफो दिजे तो पोत बाबा वाह वाह थी वेंदी। अच्छा, हजार बार चाहे कोई पानी पसंद जो एआई वारो गानो बुधाए तो ही वारो गानो अच्छा तो बुधूं था।

0: अच्छा नांगर शहर हमें गोरखी से सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम भाई।
1: खो जाऊं मैं।
0: अच्छा कॉपी वालों गाना बुधो से जो हो तुझा बार बार कॉपी हुए ना उन्हें हुक्का बार बार कॉपी वालों गानों ना लाए थी सके तो। अच्छा हजार भाई थैंक यू सो मच तुम से गड आए और फरवा तुम्हें सजो प्रोग्राम पसंद आए सो थैंक यू

0: नाचे रे
1: आंधे तेरे प्यार में दिल ये नाचे रे। डी स्किन ब्यूटी क्रीम की बात हो रही है, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के प्यार की बात हो रही है। आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे तो हमारे साथ जरा शेयर किया करें, और उसके अलावा पोस्ट को लाइक और शेयर करें। हाँ जी, पोस्ट को लाइक और शेयर किया करें, इससे ये होता है कि भाई मोहब्बतें बढ़ती है, और ये मोहब्बत एक तरफा नहीं होती, दोनों तरफ से निभाई जाती है। तो अगर मैं आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बताती हूँ तो आप बदले में पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें, ठीक है।

राधो से तो आजकल लोग हमें पहले इस्तेमाल करते हैं फिर विश्वास करते हैं. लगे ये तो जमाना चुका ना थोड़ा बहुत होती वही हुआ है. पहले जो चीजें सीधी होती थी अब

उस वक्त सोचो से या एडा भला भला गाना गाई दो पर ये थी वही वाहे अखलाक भाई बहुत शुक्रिया आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है साजा तहां जो गानो आहे लिस्ट में बाबा पंधमिया जान आयो सबर कयो सबर

बिल्कुल डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं अखलाक भाई, कहते हैं डी स्किन जो यू तां के जको नंबर बुधा दे ना, उन्हें नंबर तां तवा मालूमात वठी सको था, ठीक है? सो नंबर जको आ बुधायो तां के प्रोग्राम में, उन्हें नंबर ते तवा कॉल या वरी मैसेज करी सरीना कयो। तो आपको सारी वो मालूमात मिल जाएगी जो शायद आपको मुझसे नहीं मिल पाते। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरत होते रहिए, ठीक है? अच्छा हबीबुल्ला तेबू भाई, आपको वेलकम हो गया, आप प्रोग्राम में मौजूद है।

ओके तो क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना है जो कि हमने एंजॉय किया। और इसी के साथ साथ अगर आप भी खूबसूरत बनना चाहते हैं तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल के फौरन बाद ही आपको मिल जाएगी वो खूबसूरती जो कि आप हमेशा से हासिल करना चाहते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश मार्केट में अवेलेबल है, आप कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके करीबी जनरल स्टोर पर नहीं मिलते तो जो आपको नंबर बताया प्रोग्राम के अंदर उसके ऊपर रब्ता कीजिएगा और अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराते रहिएगा। और उसके बाद जो है ना आपके करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल हो जाएंगे तो आप वहाँ से जाकर इजीली परचेज कर सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ बिल्कुल आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम ये थोड़ा जिन जिन मानू मिस कॉल कई तो उन्हें नंबर ब्लॉक थी वह हुआ वरी मानू जन पे आधी ऐसा कॉल कई था तो सारी कॉल को खड़ी वने तो मिस कॉल न डो तो डायरेक्ट कॉल किया मैसेज छे डो ठीक है मतलब समझी आना चाहती चवा।

अच्छा खूबसूरती त हर कोई चवंदो आहे न त असांखे मिली ज्यादा खूबसूरती मिले त तव्हां ज्यादा खूबसूरती हासिल करणु चाहियो था त ॿिया प्रोडक्ट अगरि तव्हां इस्तेमाल कयो पिया त हुननि खे गुड बाई टाटा चओ हाणे छो त हाणे मार्केट में डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इहो फ़ाइदो आहे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम मेडिकेटेड फार्मूलो आहे यानी कि अगरि तव्हां इस्तेमाल कंदा त तव्हांजी जेका खूबसूरती आहे न उहो सेफ़ बि रहंदी ऐं तव्हांजे हुस्न में इज़ाफ़ो बि ईंदो रहंदो सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां बेफ़िक्र थी करे लॻाए सघो था इस्तेमाल कयो ऐं पंहिंजी खूबसूरती जो ख़्यालु रखो।

अलावा असो भी हाने चंगो हाने खुदा हाफिज अव वरी तां सा मुलाकात मुझे थे पई पंज बजे वाले प्रोग्राम में। अच्छा फहीम इतने लास्ट में गाल कही दादा ऐसा तो नहीं होगा कि हम क्रीम लगाएं तो खूबसूरत हो जाएं, जब क्रीम छोड़ें तो पहले जैसे हो जाएं। डी स्किन ब्यूटी क्रीम से बिल्कुल भी ये कोई भी मसलो न थी दो, अगर तां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो पया तो जेका खूबसूरती तां के मिली वया वो सिर्फ तवां जी हुंदी, तवां का कोई भी वापस न तो वठी सके। तां चाहे प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो या न कयो, ठीक है, सो इस्तेमाल करी दिसो जेको हुसन तां के मिलदो तां जो हुंदो बाबा दिल जाए कयो, अड़ी का भी गाल कोने का। सो बेफिक्र थी करी तवां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो, अई उन खां अलावा वरी मिलूं था 5 बजे वारे प्रोग्राम में। चंगो हाणी अला हाफिज़ मोकलाणी ना है बाबू सन सलामत सास सलामत पांजो ओई दो सरो ख्याल रखना किते का गलती थी फिरन ना माजरत कयूं था बाबा, ठीक है जी ना फीडबैक रेजी वे या गाना रेजी या सबने का माजरत। सो अला हाफिज़ बाय बाय।

0: आईनी अदालत वट आहे। जस्टिस आमिर फारूक चयो त सुप्रीम कोर्ट में अर्तवा हेठ केस फौजदारी नोट जो आहे। असां वटि केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे फैसले ख़िलाफ़ आयो आहे। जस्टिस अली बाकिर चयो आहे त सवाल ही आहे त हाणे आईन जी तशरीह ऐं बुनियादी हक़नि वारे केस केर ॿुधी सघे थो। वज़ीर-ए-आज़म मुल्की बरामदे अमल खे वधीक आसान, तेज़ ऐं शफ़ाफ़ बणाइण जी हिदायत करे छॾी। बरामदाती सनअतनि लाइ जदीद टेक्नोलॉजी तहक़ीक ऐं जिदत खे हथी ॾियण जो हुकुम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी तारत हेठि मुल्की बरामदात वधाइण ऐं मुआशी तरक़ीअ खे तेज़ करण बाबति इजलास। शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त बरामदात में वाद खे मुल्की मुआशी तरक़ीअ जो बुनियादु बणायो वञे। रिवायती शोबनि सां गॾु ॿियनि शोबनि खे बि आलमी मंडीअ में बरामदात लाइ तयारु कयो वञे। रंडकूं ख़तम कयूं वञनि ॿियनि शोबनि खे बि आलमी मंडीअ में बरामदात लाइ तयार कयो वञे। रंडकूं ख़तम कयूं वञनि। अमेरिका ईरान सां जारी जंग में 18 फौजियुनि जे मारजण ऐं 417 ज़ख़्मी थियण जी तसदीक करे छॾी। 18 जंगी जहाज़ ऐं हेलीकॉप्टर बि तबाह थियण जो एतिराफ़। 30 ड्रोन बे तबाह ऐं हथियारनि जे ज़खीरे में घटताई थियण जो एतिराफ़ करे छॾियो। ईरान सां जंग में थियल नुक़सान जी कांग्रेस पारां तयार कयल रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट मूजिब ईरान सां जंग सबबि अमेरिका जे हथियारनि वारे ज़खीरे में घटताई थी आहे, जंहिंजी बहालीअ में रंडकूं आहिनि। हथियारनि में वाद लाइ घणो वक़्तु लॻी सघे थो। ईरानी हमलनि जे नतीजे में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, यूएई, इराक, ओमान ऐं उर्दन में बि मौजूद अमेरिकी अॾनि खे बि वॾो नुक़सान पहुतो आहे। जंगी जहाज़नि ऐं हेलीकॉप्टर जो बि वॾो नुक़सान थियो आहे। तेल ऐं आबनार मज़ी सूरतहाल हाणे तब्दील थी चुकी आहे। ईरान जा शर्त क़बूल करण ताईं ॻाल्हियूं न थींदियूं। ईरान जे क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार मोहसिन रज़ाई चयो आहे त अमेरिकी सदर कॾहिं चवे थो त ॻाल्हियूं न थींदियूं ऐं कॾहिं ॻाल्हियुनि लाइ तयार हुजण जा बयान ॾिए थो। संदसि बयाननि ते कंहिंखे गुमराह न थियणु घुर्जे। लबनानी घरू वज़ीर जी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी सां मुलाक़ात। ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि समेत खिते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। ॿिन्ही अॻवाननि जो मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। लबनानी घरू वज़ीर खे घरू वज़ारती आफ़ीस पहुचण ते सलामी बि ॾिनी वई। आईन में इख़्तियार ऐं हदूं वाज़े थियल आहिनि। इख़्तियारनि जे इस्तेमाल में आईन खे हर सूरत में मथां रखणु घुर्जे। वफ़ाक़ी आईनी अदालत जे चीफ जस्टिस अमीरुद्दीन ख़ान तकलीफ़ खे ख़िताब कंदे चयो आहे त आईनी ते अमल करण खे मुआशिरे में इस्तेहकाम आणे सघे थो। नए अदालती साल में इंसाफ़ जी फ़राहमी वारो अज़म वरजायूं था।
1: आप सुन रहे थे जीए एफ।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी, उहा बे डी घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9:30-6:30 शाम ताईं। नोट, असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल लोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
8: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
9: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
8: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
9: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
9: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 03132525786।
9: जी हा, 2315-2575-786।
8: GAFM रेडियो नेटवर्क,
9: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: मेरा
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: केश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435, एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
3: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
6: सुनते रहो GFM 90.4।
7: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
2: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
7: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
2: ऐं हा, गोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
7: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 03132525786।
2: जी हा, 2315525786।
7: GFM रेडियो नेटवर्क,
2: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: It's 3:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 PM ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: मातली आस पास की आवाम लाए खुशखबरी मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फीन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वट बरवक्त मौजूद न हुंदी वा बेडी घुराए पूरी करे दींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबह 9:30 to 6:30 शाम ताई नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163
4: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
5: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है
6: सुनते रहो GFM 90.4

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: It's 4 PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: जो हुकुम वफा की आईनी अदालत के दिन जे निजी अस्पताल में इलाज वाली दरख्वास्त बुधड़ी कई अटॉर्नी जनरल की अदालत के पीटीआई बानी केस रिकॉर्ड तलब करण जी इस्तदा चीफ जस्टिस अमीन उद्दीन खान चयो है त दरख्वास्त गुजार मूजिब गरीब ए अमीर लाए आईन ए कानून एक जेड़ो हुजण घुर्जे जस्टिस अली बाकर नजवी अटॉर्नी जनरल के मुखातिब थींदे चयो है त छा अवां सुप्रीम कोर्ट में एतराज वारे हो अटॉर्नी जनरल जवाब डींदे चयो त सुप्रीम कोर्ट असांखे नोटिस करण बदिरां हुकुम जारी कयो आईन जी तशरीह जो बि इख़्तियार हाणे वफ़ाक़ी आईन अदालत वटि आहे जस्टिस आमिर फारूक चयो त सुप्रीम कोर्ट में अर्तवा हेठि केस फ़ौजदारी नोट जो आहे असां वटि केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे फैसले ख़िलाफ़ आयो आहे जस्टिस अली बाकिर नज़वी चयो त सवाल ही आहे त हाणे आईन जी तशरीह ऐं बुनियादी हक़नि वारा केस केर ॿुधी सघे थो
4: वज़ीर आज़म मुल्क की बरामदी अमल के वधीक आसान तेज ए शफाफ बनाने की हिदायत करे छी बरामदती सनअतुनि लाइ जदीद टेक्नोलॉजी तहक़ीक़ ऐं जिदत खे हथी ॾियण जो हुकुम वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जी सदारत हेठि मुल्की बरामद वधाइण ऐं मुआशी तरक़ीअ खे तेज़ करण बाबति इजलास शहबाज़ शरीफ चयो त बरामद में वाद खे मुल्की मईशत तरक़ीअ जो बुनियाद बणायो वञे रवायती शोबनि सां गॾु ॿियनि शोबनि खे बि आलमी मंडीअ में बरामद लाइ तयार कयो वञे रंडकूं ख़तम कयूं वञनि
3: अमेरिका ईरान सां जारी जंग में 18 फ़ौजियुनि जे मारिजण ऐं 417 ज़ख़्मी थियण जी तसदीक करे छॾी 18 जंगी जहाज़ ऐं हेलीकॉप्टर बि तबाह थियण जो एतिराफ़ 30 ड्रोन बि तबाह ऐं हथियारनि जे ज़खीरे में बि घटिताई थियण जो एतिराफ़ करे छॾियो ईरान सां जंग में थियल नुक़सान जी कांग्रेस पारां तयारु कयल रिपोर्ट जारी रिपोर्ट मूजिबि ईरान सां जंग सबबि अमेरिका जे हथियारनि वारे ज़खीरे में घटिताई थी आहे जंहिंजी बहालीअ में रंडकूं आहिनि हथियारनि में वाध लाइ घणो वक़्तु लॻी सघे थो ईरानी हमलनि जे नतीजे में सऊदी अरब कुवैत बहरीन यूएई इराक उमान ऐं उर्दन में मौजूद अमेरिकी अॾनि खे बि वॾो नुक़सान पहुतो आहे जंगी जहाज़नि ऐं हेलीकॉप्टर जो बि वॾो नुक़सान थियो आहे
4: तेल ऐं आबन अरम जी सूरताल हाणे तब्दील थी चुकी आहे ईरान जा शर्त क़बूल करण ताईं ॻाल्हियूं न थींदियूं ईरान जे क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार मोहसिन रज़ई चयो आहे त अमरीकी सदर कॾहिं चवे थो ॻाल्हियूं न थींदियूं ऐं कॾहिं ॻाल्हियुनि लाइ तयार हुजण जा बयान ॾिए थो संदसि बयाननि ते कंहिंखे गुमराह न थियणु घुर्जे
3: पिमसाने में इंतज़ामी ग़फ़लत साबित बिजलीअ में ख़राबी बाहि जो कारण करार पिमसाने जी जांच लाइ वज़ीर आज़म पारां जोड़ियल कमेटी जी रिपोर्ट चयो वियो आहे त ॿ नंबर एसी जी सप्लाई लाइन मां बाहि लॻण जा इम्कान वधीक आहिनि बाहि कंहिं तकरीबकारी या इनक्यूबेटर सां लॻण जो इम्कान नाहे नर्सरीअ में दूहे ते वॼंदड़ अलार्म बि मौजूद न हो ॿार हिफ़ाज़ती निज़ाम जी नाकामी सबबि फोत थिया 10 बेडनि ते बदल वार्ड में 15 ॿार इलाज हेठि हुया अलार्म ऐं एग्ज़िट सिस्टम खे फॉल करण जी बि सिफ़ारिश
4: आईन में इख़्तियार ऐं हदूं वाज़े थियल आहिनि इख़्तियारनि जे इस्तेमाल में आईन खे हर सूरत में मथां रखणु घुर्जे वफ़ाक़ी आईनी अदालत जे चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान तक़रीब खे ख़िताब कंदे चयो आहे त आईन ते अमल करे मुआशिरे में इस्तहकाम आणे सघिजे थो नए अदालती साल में इंसाफ़ जी फरहमीअ वारो अज़म मरजायूं था
3: सिंध हुकूमत पारां लाड़काणो शादतकोट ऐं कंबर में 18 सेप्टेम्बर खां पीपल्स बस सर्विस जा नवां रूट शुरू करण जो ऐलान सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील नामेमर जी सदारत हेठि ट्रांसपोर्ट ऐं मास बाबति इजलास मीरपुर ख़ासि में औरतुनि लाइ पिंक स्कूटी जे विर्स बाबति अकबराई जो बि जाइज़ो वरितो वियो शर्जीली नामेमर चयो त हुकूमत शहरनि खे जदीद ऐं महफ़ूज़ ट्रांसपोर्ट फराहम करण लाइ क़दम खणी रही आहे पीपल्स बस सर्विस खे सिंध जे ॿियनि शहरनि ऐं ज़िलनि ताईं वधायो पियो वञे

0: प्लाटन जे गैर कानूनी अलाटमेंट वारे केस जे एहतसाब अदालत में बुधणी वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ऐं बिया पेश न थिया। एहतसाब अदालत वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ऐं बियनि खे नोटिस जारी करे छॾिया। समूरनि जवाबदारनि खे 1 अक्टूबर ते तलब करे वरितो।
1: नओं देरो भरिसां पुराणे तकरार तां हाज़िरीअ ते वेंदड़ वजणा क़तल सिम शाख वटि पुराणे तकरार तां चार बंदनि फायरिंग करे सईद ऐं हाकिम खे क़तल कयो। पुलिस मूजिबि वाकियो करो क्रोस ऐं कोखर बिरादरी जे धुरियुनि में हलंदड़ पुराणे तकरार तां पेश आयो आहे। वधीक जांच करे रहिया आहियूं।
0: थारू शाह भरिसां मंझट में सड़ा माइनर मां पीरसन जी लाश जी सुञाणप थी वई। पीरसन जी सुञाणप कंडियारो वासी अलाह ॾिनो कोखर जे नाले सां कई वई आहे, जॾहिं त कारण मालूम न थी सघियो आहे। थाणो बुलाखान भरिसां नामालूम शख़्स जो चिचियल हालत में लाश हथ। पुलिस मूजिबि फोतीअ जी उमिरि 65 वर लॻी रही आहे। पीरसन खे कंहिं गाॾीअ टकरायो आहे।
1: कराची यूनिवर्सिटी जे प्रोफेसर खे धमकियूं ॾियण वारे केस में कुनिन शाह जी ज़मानत मंज़ूर। मलीर जी अदालत में प्रोफेसर आरिफ साकीअ खे धमकियूं ॾियण वारे केस जी ॿुधणी थी आहे। अदालत जवाबदार कुनिन शाह जी ज़मानत मंज़ूर कंदे 20,000 रुपियनि जा मुचलका जमा कराइण जो हुकुम ॾिनो।
0: चक भरिसां हथियारबंदनि हथां 2 नारियूं मुबैना तौर अगवा। वारसनि जो बाज़ियाबी लाइ एहतजाज गोल ॻोठ ड्रिब टांवरीअ जे रहवासियुनि नारी कलसूम ऐं नाहिद टांवरीअ जे बाज़ियाबी लाइ एहतजाज कयो। वारसनि चयो त बिरादरीअ जा हथियारबंद ॿिन्ही औरतुनि खे अगवा करे ज़बरदस्ती निकाह मथां निकाह कराए छॾियो आहे। खेनि बाज़ियाब करायो वञे।
1: बलूचिस्तान में दहशतगर्दनि सां विढ़ंदे शहीद थियल फ़ौजी जवान जे मातली भरिसां सरकारी एज़ाज़ सां तदफ़ीन। फ़ौजी जवान महबूब अली दस्तीअ जो मड़ अबाणी ॻोठ गादी दस्तीअ में फ़ौजी एज़ाज़ सां दफ़नायो वियो। पाक फ़ौज दस्ती ॾिनी ऐं क़बर ते क़ौमी झंडो फड़कायो।
0: कुनरीअ में ज़हरीली लसी पीअण सबबि ॿारनि समेत 9 गर्भातियुनि जी हालत ख़राब। इस्पताल मुंतक़िल। नबीसर में चांवरनि सां गॾु लसी पीअण सबबि 7 ॿारनि समेत 9 गर्भाती बेहोश थिया।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग 9:30 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस, टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बहितरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GFM 90.4।
6: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो,
7: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
7: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03132525786।
7: जी हा, 2315-2575-786।
6: GFM रेडियो नेटवर्क,
7: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रोबीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
2: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
0: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM
4: 90.4। पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 03132525786।
3: जी हा, 2315-2576।
4: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 4:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
0: Sindh ki ho to aawaz bhi Sindh ki hai. GFM 88 Network. GFM 88 Network. Sindh ki aawaz.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: जेकरे तवा के मेदे जी तकलीफ है सीने जी जलन खट्टियों उगरायों भुख न लगन या बदहजमी जड़ा मसला आहिन त हाणी परेशान छण जी जरूरत न आए इस्तेमाल करियो शिफाए मेदा कोरस जेको मैदे जी खराबी ऐं हाज़मे जे मसलनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली राब्ते जे लाइ फोन करियो 0326638879 ऐं 0312024001287 शिफ़ाए मैदा कोरस सेहतमंद मैदो सेहतमंद ज़िंदगी
4: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
5: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
4: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
5: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
4: اولاد جو نہ تھین औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
4: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 0313086316
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 0300-2962-435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
0: सुनते रहो GFM 90.4

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: छा तव्हां जोड़न जे सूर, पुठन जी तकलीफ़, कुल्हन जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो खात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़न, पुठन, कुल्हन ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। खात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। खात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
2: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी? हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम। अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि? त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
5: अमड़ सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बहितरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
7: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
8: त पोए GFM
4: 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए
7: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
4: ऐं हाँ गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन
7: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
7: 0331252576
4: जी हाँ 3135525786
7: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 5:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है. इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ. बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो. आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें. शराइत जवाबित लागू हैं.
3: मातली आस पास की अवाम अलै खुशखबरी. मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी. मेडिकल स्टोर वारन लाए 12 सैकड़ो ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10 सैकड़ो रियायत ते मिलंदी. जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी, उहा बे डी घुराए पूरी करे ॾींदासीं. घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी. राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो. टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं. नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा. एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली. राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316 3.
4: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी. छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटूं पकियूं हुजनि, त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो. सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो. मोबाइल नंबर 0300296243 5. एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली.
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल.
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद.
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी.
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी. ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे.
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक, मातली. वधीक मालूमात लाइ 2347321230.
7: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4.

0: वज़ीर आज़म मुल्की बरामदी अमल के वधीक आसान तेज ऐं शफ़ाफ़ बणाइण जी हिदायत करे छॾी। बरामदी सनअतनि लाइ जदीद टेक्नोलॉजी तहक़ीक़ ऐं जिदत खे हथी ॾियण जो हुकुम। वज़ीर आज़म शफ़ाफ़ सर्विस अदालत हेठि मुल्की बरामदात वधाइण ऐं मुआशी तरक़ी खे तेज़ करण बाबति इजलास। शहबाज़ शरीफ़ चयो त बरामदात खे वाधि खे मुल्की मुआशी तरक़ीअ जो बुनियादु बणायो वञे। रिवायती शोबनि सां गॾु ॿियनि शोबनि खे बि आलमी मंडी में बरामदात लाइ तयार कयो वञे। रंडकूं ख़तम कयूं वञनि। अमरीका ईरान सां जारी जंग में 18 फौजियुनि जे मारजण ऐं 417 ज़ख़्मी थियण जी तसदीक करे छॾी। 18 जंगी जहाज़ ऐं हेलीकॉप्टर बि तबाह थियण जो एतराफ़। 30 ड्रोन बि तबाह ऐं हथियारनि जे ज़खीरे में बि घटिताई थियण जो एतराफ़ करे छॾियो। ईरान सां जंग में थियल नुक़सान जी कांग्रेस पारां तयार कयल रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट मूजिबि ईरान सां जंग सबबि अमरीका जे हथियारनि वारे ज़खीरे में घटिताई थी आहे, जंहिंजी बहाली में रंडकूं आहिनि। हथियारनि में वाध लाइ घणो वक़्तु लॻी सघे थो। ईरानी हमलनि जे नतीजे में सऊदी अरब, कुवैत, बहरैन, यूएई, इराक, ओमान ऐं उर्दन में मौजूद अमरीकी अॾनि खे बि वॾो नुक़सान पहुतो आहे। जंगी जहाज़नि ऐं हेलीकॉप्टर जो बि वॾो नुक़सान थियो आहे। सऊदी अरब जो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान मिस्र पहुची वियो। मिस्री सदर अल सीसी मोहम्मद बिन सलमान जो एयरपोर्ट ते आदर भाव कयो। इन्हीं अगवाणनि में ख़ते जी सूरत हाल ते तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कई वई। मोहम्मद बिन सलमान मिस्र रवानगी खां पहिरीं काबीना खे बि एतमाद में वरितो हो। 200 रातियुनि खां रस्तनि ते मौजूद ईरानी अवाम दुश्मन जी शिकस्त खे साबित करे छॾियो आहे। ईरान जी दिफ़ाई सलाहियत बि अवाम जे अज़म सां गंढियल आहे। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकर कारीपाफ चयो आहे त दबाउ या पाबंदियूं ईरानी अवाम जे वतन सां मोहबत घटाए नथियूं सघनि। टिन सानहे में इंतज़ामी गफ़लत साबित। बिजली में ख़राबी बाहि जो कारण करार। वज़ीर आज़म जी जांच कमेटी समूरनि जवाबदारनि खे आजो करे छॾियो। टिन सानहे जी जांच लाइ वज़ीर आज़म पारां जोड़ियल कमेटी जी रिपोर्ट में चयो वियो आहे त एसी जी सप्लाई लाइन मां बाहि लॻण जा इम्कान वधीक आहिनि। बाहि कंहिं तक़रीबकारी या इन्क्यूबेटर मां लॻण जो इम्कान न आहे। नर्सरी में दूहे ते वॼंदड़ अलार्म बि मौजूद न हो। ॿार हिफ़ाज़ती निज़ाम जी नाकामी सबबि फोत थिया। अलार्म ऐं एग्ज़िट सिस्टम खे फॉल करण जी बि सिफ़ारिश कई। आइन में अख़्तियार ऐं हदूं वाज़े थियल आहिनि। अख़्तियारनि जे इस्तेमाल में आइन खे हर सूरत में मथां रखणु घुर्जे। वफ़ाक़ी आइनी अदालत जे चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान तक़रीब खे ख़िताब कंदे चयो आहे त आइनी अमल करे माशरे में इस्तेहकाम आणे सघे थो। नई अदालती साल में इंसाफ़ जी फ़राहमी वारो अज़म वरजायूं था। नव देरो भरिसां पुराणी तकरार तां हाज़िरी ते वेंदड़ 5 ॼणा क़तल। सिम शाख वटि पुराणी तकरार तां हथियार बंदनि फायरिंग करे सईद कढियो ऐं हाकिम कढियो खे क़तल कयो। पुलिस मूजिबि वाकियो कढियो खुरूस ऐं खोखर बिरादरी जी धुरियुनि में हलंदड़ पुराणी तकरार तां पेश आयो आहे। वधीक जांच करे रहिया आहियूं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: मातली आसपास की आवाम लाइ खुशखबरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086313।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
5: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 03132525786।
5: जी हा 2315525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दरिया ऐसे की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतों यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत जवाबित लागू हैं।
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डीह जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247 3141 230।
3: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% और घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे दींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9 खां 6:30 बजे शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलाइण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 03125252786।
4: जी हाँ 3135525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत जवाबित लागू हैं।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण और तुंजे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतों ने बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली, वधिक मालूमात लाय 2347-3141-230।
1: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316 3।
2: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: It's 7 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: हतमी फैसलो वजीर आजम की सदारत है टी दड़ी इजलास में तो वेंदो
4: वफाकी हुकूमत से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कौन सी शिपमेंट है, ये कौन सा जहाज है जो रात को उड़ता है और अगले दिन 11:30 बजे पाकिस्तान पहुंच जाता है और वो कीमतें जो हैं बढ़ा दी जाती हैं। इसलिए भी जो है इसके ऊपर खत्म की जाए फौरी तौर पर।
5: पुट द रेजोल्यूशन टू द हाउस, दोज हु आर फॉर द रेजोल्यूशन में से आए एंड दोज हु आर अगेंस्ट में से नो। The I David and the resolution is carried.
4: हम इनकी भरपूर ताईद करते हैं रेजोल्यूशन की और हम वफाकी हुकूमत को हम गुजारिश करते हैं कि अगर जब तक आपके इंटरनेशनल हालात ठीक नहीं, हमें आपकी मजबूरी पता है, तब तक आप लेवी को खत्म करें ताकि लोगों के ऊपर बोझ ना हो।
6: इनकी हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, मेरा ख्याल इनको ये डर होगा कि मुखालफत के ऊपर से इनकी नौकरी खत्म हो जाए।
3: सिंध असेंबली पेट्रोल जो कीमतों घटाने बाबत ठहराव मंजूर करे वरतो। एमकेएम पारा मुखालफत सीनियर वजीर शजील नामेवर पारा वफाकी हुकूमत का पेट्रोल ते लागू लेवी खत्म करने का मुतालबो। शजील नामेवर चो तो 2008 में पेट्रोल महंगो थे एमकेएम पीपल्स पार्टी की हुकूमत का धार थी वही हुई। हाँ भी एमकेएम वफाकी हुकूमत की इतिहादी है, हुकूमत से मामले ते गलए पघारदार तबको पीसी वो है। वफाकी हुकूमत होश का कम वे पेट्रोलियम लेवी खत्म करे। सूबाई वजीर सईद हरी है तो वफाक में नौकरी खत्म थे खौफ का एमकेएम ठहराव की मुखालफत कई। हुकूमत पारा पेट्रोल ते वाम के डिनल रिलीफ टैक्स का वधिक है। लेवी 80 रुपया ए वजीर आजम 100 रुपये जो रिलीफ दिनो है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक है त मुल्क वडियन गाड़ियन वारन जो भी है पर वजीर आजम सब का पहरी नंढियन गाड़ियन वारन के रिलीफ दिनो है। पेट्रोल ते रिलीफ वारी स्कीम इस्लामाबाद में शुरू थी वही है, बे मुल्क में भी जल्द शुरू थी वेंदी। वजीर आजम जो पेट्रोल ते रिलीफ दिनो है वो टैक्स का वधिक है। जंग खत्म थियण से समूरी दुनिया के रिलीफ मिल। यमनी होसियन की सऊदी सरजमीन ते हमलन बाद मक्के की सिक्योरिटी सख्त। सऊदी काबीना के हमलन जो भरपूर जवाब देने का ऐलान सऊदी वली अहद काबीना के इजलास बाद मिस्र पहुंची वो। काहिरा पहुंचने ते मिस्री सदर सऊदी वली अहद जो आदर भाग कियो। मुलाकात दौरान वितरफन लागापन ए खत्े की सूरत ते गालू कई वही।

बाबुल मुंदब की बंदिश जा नतीजा तबाह कंदड़ निकली सकन था। कतर दुनिया के खबरदार कर छो। कतरी पढ़ी वजारत के अमलदार इब्राहिम हाशमी है दुनिया पहरी ही अपनाए हरमुस की बंदिश भोगे रही है। बाबुल मुंदब के सागी सूरतयाल में न गुजरण घुर्जे। मसले जो हल गालियन जरिए कढ़ो वने।

0: अमरीका ईरान सां जारी जंग में 18 फौजियुनि जे मारजण ऐं 417 ज़ख़्मी थियण जी तसदीक करे छॾी। 18 जंगी जहाज़ ऐं हेलीकॉप्टर बि तबाह थियण जो एतराफ़, जीअं ड्रोन बि तबाह ऐं हथियारनि जे ज़खीरे में बि घटिताई थियण जो एतराफ़ करे छॾियो। ईरान सां जंग में थियल नुक़सान जी कांग्रेस पारां तयार कयल रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट मूजिब ईरान सां जंग सबबि अमरीका जे हथियारनि वारे ज़खीरे में घटिताई थी आहे, जंहिंजी बहाली में रंडकू आहिनि। हथियारनि में वाध लाइ घणो वक़्तु लॻी सघे थो। ईरानी हमलनि जे नतीजे में सऊदी अरब, कुवैत, बहरैन, यूएई, इराक, उमान ऐं उर्दन में मौजूद अमरीकी अॾनि खे बि नुक़सान पहुतो आहे। जंगी जहाज़नि ऐं हेलीकॉप्टर जो बि वॾो नुक़सान थियो आहे। बसोर हाथियुनि खां रस्तनि ते मौजूद ईरानी अवाम दुश्मन जी शिकस्त खे साबित करे छॾियो आहे। ईरान जी दिफ़ाई सलाहियत बि अवाम जे अज़म सां गंढियल आहे। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ़ चयो आहे त दबाउ या पाबंदियूं ईरानी अवाम जे वतन सां मोहबत घटाए नथियूं सघनि। वफ़ाक़ी आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट मां पीटीआई बानी वारे केस जो समूरो रिकॉर्ड तलब करे वरितो। हाई कोर्ट खे बि साॻी नोयत वारनि केसनि जो रिकॉर्ड मोकिलण जो हुकुम। वफ़ाक़ी आईनी अदालत कैदियुनि जी निजी अस्पताल में इलाज वारी दरख़्वास्त ते ॿुधणी कई। अटॉर्नी जनरल जी अदालत खे पीटीआई बानी केस जो रिकॉर्ड तलब करण जी सज़ा। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान चयो आहे त दरख़्वास्त गुज़ार मूजिब ग़रीब ऐं अमीर लाइ आइन ऐं कानून हिकु जहिड़ो हुजणु घुर्जे। जस्टिस अली बाकर नदवी अटॉर्नी जनरल खे मुखातिब थींदे चयो त छा तव्हां सुप्रीम कोर्ट में एतराज़ वारियो हो। अटॉर्नी जनरल जवाब ॾींदे चयो त सुप्रीम कोर्ट असांखे नोटिस करण बदिरां हुकुम जारी कयो। आइन जी तशरीह जो बि इख़्तियार हाणे वफ़ाक़ी आइनी अदालत वटि आहे। जस्टिस आमिर फारूक चयो त सुप्रीम कोर्ट में अल्तवा हेठि केस फौजदारी नोयत जो आहे। असां वटि केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे फैसले ख़िलाफ़ आयो आहे। जस्टिस अली बाकर नदवी चयो त सवाल ही आहे त हाणे आइन जी तशरीह ऐं बुनियादी हक़नि वारा केस केर ॿुधी सघे थो। वज़ीर आज़म मुल्की बरामदी अमल खे वधीक आसान, तेज़ ऐं शफ़ाफ़ बणाइण जी हिदायत करे छॾी। बरामदाती सनअतनि लाइ जदीद टेक्नोलॉजी, तहक़ीक़ ऐं जिदत खे हथी ॾियण जो हुकुम। वज़ीर आज़म शेख आसिफ जी सदारत हेठि मुल्की बरामदात वधाइण ऐं माशी तरक़ी खे तेज़ करण बाबति इजलास। शेख आसिफ चयो त बरामदात में वाद खे मुल्की माशी तरक़ी जो बुनियाद बणायो वञे। रिवायती शोबनि सां गॾु ॿियनि शोबनि खे बि आलमी मंडी में बरामदात लाइ तयारु कयो वञे। झंडकू ख़तम कयूं वञनि। ٹمس سانے میں انتظامی غفلت ثابت، بجلی میں خرابی باہ جو کرن قرار۔ وزیر اعظم کی جانچ کمیٹی سمورن جوابدارن کے آجو کرے چڈیو۔ ٹمس سانے کی جانچ لائے وزیر اعظم پارا جوڑل کمیٹی کی جی رپورٹ میں چھو ہوا ہے تا ایس سی جی سپلائی لائن ماں باہ لگن جا امکان ودھیک ہیں۔ باہ کے تقریب کاری یا انکیوبیٹر ماں لگن جا امکان نہ ہے۔ نرسری میں دھوئے تے وجندر الارم بھی موجود نہ ہو۔ بار حفاظتی نظام کی ناکامی سبب فوت تھیا۔ अलार्म ऐं एग्ज़िट सिस्टम खे फॉल करण जी बि सिफ़ारिश कई।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 031308631633।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: ऐं हा, गोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 03132525786।
4: जी हा, 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3404-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिससे मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
7: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो,
8: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
8: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 03132525786।
8: जी हा, 2315-2580।
7: GFM रेडियो नेटवर्क,
8: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस, टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में हिक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 02-347-3241-230।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अमेरिका ईरान सां जारी जंग में 18 फौजियुनि जे मारजण ऐं 417 ज़ख़्मी थियण जी तस्दीक। जहाज़ ऐं हेलीकॉप्टर बि तबाह थियण जो टीह ड्रोन बि तबाह ऐं हथियारनि जे ज़खीरे में बि घटिताई थियण जो एतराफ़ करे छॾियो। ईरान सां जंग में थियल नुक़सान जी कांग्रेस पारां तयार कयल रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट मूजिबि ईरान सां जंग सबबि अमरीका जे हथियारनि वारे ज़खीरे में घटिताई थी आहे, जंहिंजी बहाली में रंडकूं आहिनि। हथियारनि में वाध लाइ घणो वक़्तु लॻी सघे थो। ईरानी हमलनि जे नतीजे में सऊदी अरब, कुवैत, बहरैन, यूएई
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
6: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत।

0: वक्त जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारी जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
0: रोजानू सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐ बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
0: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 347-3141-230
1: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारन लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163
0: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
0: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
0: ऐं हां गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
3: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 03132525786
0: जी हां बुड़ी 331525786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस, हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है, GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
4: केश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोजानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।
7: कारोबार की तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिक अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 03132525786।
4: जी हा, 2315525786।
7: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: It's 8:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
0: Sindh ki ho to aawaz bhi Sindh ki hai. GFM 88 Network Sindh ki aawaz.
2: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमालु करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। رابطے کے لیے فون کریو 0302-36-36-879-0312-01-287. سکون، اعتماد، صحت مند زندگی ڈاں قدم۔
3: زندگی گزاریو اعتماد سان، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف GFM 88 نیٹورک تے۔
4: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ ख़ुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस, टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकानी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियणु, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियणु, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
8: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
9: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
8: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
9: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
9: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 03125257 86।
9: जी हा, 2315525786।
8: GFM रेडियो नेटवर्क,
9: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GAFM 90.4।
2: करो छो।

0: फैसलो अॼु सरकारी गाॾियूं बि ग्राउंड कयूं वेंदियूं। जुमो छंछर ऐं आचर मोकल हूंदी। सरकारी मुलाज़मनि खे बि रोटेशन तहत ऑफिसनि में घुराइण ते ग़ौर। हतमी फ़ैसिलो वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि थींदड़ इजलास में कयो वेंदो।
1: वफाकी हुकूमत से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कौन सी शिपमेंट है, ये कौन सा जहाज है जो रात को उड़ता है और अगले दिन 11:30 बजे पाकिस्तान पहुंच जाता है और वो कीमतें जो हैं बढ़ा दी जाती हैं। ये लेवी जो है इसके ऊपर खत्म की जाए फौरी तौर पे।
2: पुट द रेजोल्यूशन टू द हाउस, दोज हु आर फॉर द रेजोल्यूशन में से आए एंड दोज हु आर अगेंस्ट में से नो। The I David and the resolution is carried.
3: हम इनकी भरपूर तायद करते हैं रेजोल्यूशन की, और हम वफाकी हुकूमत को हम गुजारिश करते हैं कि अगर जब तक आपके इंटरनेशनल हालात ठीक नहीं, हमें आपकी मजबूरी पता है, तब तक आप लेवी को खत्म करें ताकि लोगों के ऊपर बोझ ना हो।
4: इनके हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, मेरा ख्याल इनको ये डर होगा कि मुखालफत के ऊपर इनकी नौकरी खत्म हो जाए।
0: सिंध असेंबली पेट्रोल जूं कीमतूं घटाइण बाबति ठहराउ मंज़ूर करे वरितो। MQM पारां मुखालफत, सीनियर वज़ीर शजीलना मेमण पारां वफ़ाक़ी हुकूमत खां पेट्रोल ते लागू लेवी ख़त्म करण जो मुतालबो। शजीलना मेमण चयो त 2008 में पेट्रोल महांगो थियण ते MQM पीपल्स पार्टी जी हुकूमत खां धार थी वई हुई। हाणे बि MQM वफ़ाक़ी हुकूमत जी इतिहादी आहे, हुकूमत सां मामले ते ॻाल्हाए पघारदार तबिको पीसजी वियो आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत होश खां कम वठे ऐं पेट्रोलियम लेवी ख़त्म करे। सूबाई वज़ीर सईद ख़नी चयो आहे त वफ़ाक़ मां नौकरी ख़त्म थियण जे ख़ौफ़ खां MQM ठहराउ जी मुख़ालफ़त कई।

हुकूमत पारां पेट्रोल ते अवाम खे ॾिनल रिलीफ टैक्स खां वधीक आहे। लेवी 80 रुपया ऐं वज़ीर आज़म 100 रुपयनि जो रिलीफ ॾिनो आहे। वफ़ाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक चयो आहे त मुल्क में वॾियुनि गाॾियुनि वारनि जो बि आहे, पर वज़ीर आज़म सभ खां पहिरीं नंढियुनि गाॾियुनि वारनि खे रिलीफ ॾिनो आहे। पेट्रोल ते रिलीफ वारी स्कीम इस्लामाबाद में शुरू थी वई आहे, ॿई मुल्क में बि जल्द शुरू थी वेंदी। वज़ीर आज़म जेको पेट्रोल ते रिलीफ ॾिनो आहे उहो टैक्स खां वधीक आहे। जंग ख़तम थियण सां समूरी दुनिया खे रिलीफ मिलंदो।

अमरीका ईरान सां जारी जंग में अरिड़हं फौजियुनि जे मारजण ऐं 417 ज़ख़्मी थियण जी तस्दीक करे छॾी। अरिड़हं जंगी जहाज ऐं हेलीकॉप्टर बि तबाह थियण जो एतराफ़, 30 ड्रोन बि तबाह ऐं हथियारनि जे ज़खीरे में बि घटिताई थियण जो एतराफ़ करे छॾियो। ईरान सां जंग में थियल नुक़सान जी कांग्रेस पारां तयार कयल रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट मूजिब ईरान सां जंग सबब अमरीका जे हथियारनि वारे ज़खीरे में घटिताई थी आहे, जंहिंजी बहाली में रंडकूं आहिनि। हथियारनि में वाध लाइ घणो वक़्तु लॻी सघे थो। ईरानी हमलनि जे नतीजे में सऊदी अरब, कुवैत, बहरैन, यूएई, इराक, ओमान ऐं उर्दन में मौजूद अमरीकी अॾनि खे बि वॾो नुक़सान पहुतो आहे। जंगी जहाज़नि ऐं हेलीकॉप्टर जो बि वॾो नुक़सान थियो आहे।

0: सौ रातियुनि खां रस्तनि ते मौजूद ईरानी अवाम दुश्मन जी शिकस्त खे साबित करे छॾियो आहे। ईरान जी दिफ़ाई सलाहियत बि अवाम जे अज़म सां गंढियल आहे। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकर कारीबाग चयो आहे त दबाउ या पाबंदियूं ईरानी अवाम जी वतन सां मोहबत घटाए नथियूं सघनि।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस, टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
8: पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
8: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 03132525786।
4: जी हा, 2315525786।
8: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

गणप कौन है, शुमार कौन है। गणप कौन है, शुमार ना है, जो माप जे सो प्यार ना है। गणप कौन है, शुमार ना है, जो माप जे सो प्यार ना है। बाहन में बखजे पवे तुझे को, बाहन में बखजी पवे तुझे को, उन्हीं खा उम्दो को हार ना है। मफाद खातिर हले तुझे को, मफाद खातिर हले तुझे को, उहो भी समझो तैयार ना है।

सिधियूं ऐं सादियूं असां जूं ॻाल्हियूं, सिधियूं ऐं सादियूं असां जूं ॻाल्हियूं, सभई थो समझे हू ॿार नाहे। हलाए हिकड़ी वयो हू गोली, हलाए हिकड़ी वयो हू गोली, ॾुखनि खां ख़ाली को ॾार नाहे। को खेप अर्पे को कैफ़ चाढ़े, को खेप अर्पे को कैफ़ चाढ़े, अञा को अहिड़ो खुमार नाहे। गणप कोन्हे शुमार नाहे, जो माप जे सो प्यार नाहे।

वंस अगेन बीहर हिकु भेरो वेलकम भलीकार ख़ुश आमदीद प्रोग्राम जे पैटर्न मौजिद असां ॿुधंदासीं हिकु ख़ूबसूरत ट्रैक नुसरत फ़तेह अली ख़ान जी आवाज़ में ही प्यार भरियो मोहबत जो पैगाम अवां सभिनी महबूबनि जे नाओ।

0: जी दोस्तों, वक्त थियो है नंढड़ी कमर्शियल ब्रेक जो। ब्रेक का वरी वरंदासे बुधंदा रहो GAFM नेटवर्क।
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
4: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग 9:30 to 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस, टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
7: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बहितरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
8: रोज़ानो सुबुह जो 10 to 10:30 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।
9: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो,
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
9: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल,
6: گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف اے ماتلی بدین
9: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار لائن لائے
6: اسانجے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
9: 0331252578 6
6: جی ہاں 2311525786
9: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
6: سندھ جو آواز

0: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.
4: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी. छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो. सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो. मोबाइल नंबर 03002962435. एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली.
5: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ खु़शख़बरी. मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी. मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी. जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं. घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी. राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो. टाइमिंग सुबुह 9:30-6:30 शाम ताईं. नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा. एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड मातली. राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163.
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है.
2: सुनते रहो GFM 90.4.

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।